0: ऐ मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

चलो गुड मॉर्निंग तो आपकी हो गई है, लेकिन कोई कहानी के साथ दिन की शुरुआत करें। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, नमस्ते सत श्री अकाल वणकम अस्सलाम वालेकुम। सिंपली आफरीन का साथ है राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, और सोचा कि सुबह सुबह के एक अच्छी पॉजिटिव कहानी के साथ में क्यों ना शुरू करें हमारा दिन। एंड इट्स नॉट प्रीची, और ज्ञान देने का कोई भी यहाँ पर इंटेंशन नहीं है, बस कहीं ना कहीं मम्मी की कुछ बातें होती है ना मुझे याद आती है, और मुझे ऐसा लगता है कि अपनी हर मम्मी जो होती है ना कुछ सीख ना अपने तरीके से बहुत अच्छे से बताती है। जैसे बचपन में मैं जब छोटी थी एंड आई यूज टू आई वॉज प्लेइंग विद अ डॉल, और एक टॉय था जिसमें बैटरीज की जरूरत थी, और जहाँ पर मी द क्यूरियस लिटिल आफरीन 6 year old बैटरी को पॉजिटिव और नेगेटिव साइड समझने की कोशिश कर रही थी, एंड आई वॉज ट्राइंग टू पुट दैट बैटरी इन अ टॉय। तो बस मम्मी ने तभी एक बहुत ही अच्छी सीख मुझे समझाई थी, और मुझे वो हमेशा जिंदगी भर मेरे साथ रही है, जो कुछ इस तरह से है कि बैटरी में अक्सर आप देखते हैं एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होते हैं, और ऐसे ही शी एक्सप्लेन टू कि यार इंसानों के साथ भी ऐसे ही होता है आफरीन, कि हर कोई चीज चलाने के लिए आपको वो बैटरी में दोनों चीजें जरूरी होती है, नेगेटिव्स एज वेल पॉजिटिव्स एज वेल। वैसे ही इंसानों में भी पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव चीजें भी होती है। अब ये अपने ऊपर है आफरीन कि किस तरह से तुम्हें वो इंसान को देखना है। कभी कभार होता है कि किसी इंसान के सिर्फ नेगेटिव साइंस हमारे सामने दिख कर आते हैं, उभर कर आते हैं, ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से गलत है, नहीं, हर एक इंसान में पॉजिटिव साइड भी होते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट लाइफ की पॉजिटिविटी इज ऑल अबाउट, कि भाई लोगों को नज़रिए से जब देखते हैं एक अच्छे नज़रिए से, तब हर चीज़ खूबसूरत लगने लगती है और ज़िंदगी इस तरह से आसान लगने लगती है। बस मम्मी की ये छोटी सी बात सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग, एंड आई एम श्योर कि ये बात आपको भी कहीं ना कहीं याद ज़रूर आएगी। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। पहले भी मैं

0: Nici.
1: Iscabana, Uscabana, Sacabana, Rambana, Murga, Murga, la vieta la Murga.
2: हेलो,
3: गुड इवनिंग मिस्टर श्रीवास्तव, मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से। हाउ आर यू?
2: वेरी फाइन, थैंक यू।
3: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है।
2: आई नो, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा। हाँ, नहीं लगता उसका।
3: नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे, यू नो।
2: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
3: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो। आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे।
2: गेम है क्या ये?
3: आओ मिलो शिलो शालो।
2: पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
3: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा, आओ मिलो शिलो शालो। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है। आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए, ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए। राइट,
2: पूरी कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट।
3: देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह। आओ मिलो,
2: आओ मिलो
3: शिलो शालो,
2: शालो
3: कच्चा धागा,
2: कच्चा धागा
3: रेस लगा लो,
2: रेस लगा लो,
3: दस पत्ते तोड़े,
2: दस पत्ते तोड़े,
3: एक पत्ता कच्चा,
2: एक पत्ता कच्चा।
3: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज़ से बोलेंगे, दस पत्ते तोड़े,
2: तोड़े
3: या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
2: दस दस दस पत्ते तोड़े,
3: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा,
2: ओके ओके सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा,
3: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
2: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
3: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को, मिस्टर श्रीवास्तव बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
2: यार ये कुछ नहीं
3: कर सर, ये सर ये सब सुन चुके हैं, अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
5: इट्स ऑल डाउन एंड डन, इज़न्ट इट? फोर बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
7: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, she is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

बन गया, डरने लगे लोग, ऐसा तूफान बन गया। और क्या कहूं मैं, सारा जहां था उसके कदमों में।

अच्छा इमेजिन करो कि रात के 12 बजे इंस्टाग्राम आपने खोला और सामने आपको ये लिख कर आ गया दैट सॉरी यू कैन नॉट एक्सेस योर इंस्टाग्राम नाउ यू कैन कम इन द मॉर्निंग एट 6 AM तो कैसा रहेगा. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और सोशल मीडिया पर ये तरह सा हवा घूम रही है कि इंस्टाग्राम जो है रात को बंद हो सकता है यानी 12 से 6 बजे तक. बट होल्ड दैट पैनिक माय फ्रेंड्स क्योंकि मैंने सोचा इसको थोड़ा सा फैक्ट चेक करती हूँ क्योंकि न्यूज़ आधी सही है और आधी इंस्टाग्राम की ऐसी ही हवा उड़ी हुई है. एक्चुअली मेटा ने US में एक मेजर चाइल्ड सेफ्टी सेटलमेंट एग्री किया है जिसके अंडर 18 यूजर्स के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक ये जो है इनके मिडनाइट से लेकर 6 AM तक इनके अकाउंट्स पर रिस्ट्रिक्शंस आएंगी प्लस दोनों एप्स मिलाकर डिफॉल्ट 2 आवर डेली यूजेज लिमिट भी होगा. ये बहुत सही किया और ये फिलहाल ना US टीन्स के लिए है दुनिया भर के हर इंस्टाग्राम यूजर के लिए नहीं है. वेल इंटरेस्टिंग पार्ट ये है दैट इंडिया में भी ना 3 अकाउंट्स ऑलरेडी स्लीपर टीन यू मीन जो टीनेजर्स है वो वाला टीन अकाउंट ठीक है ऑलरेडी स्लीप मोड जैसे फीचर्स यूज करते हैं. डिड यू नो दैट एक्चुअली जहां 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक नोटिफिकेशन जो है वो अपने आप म्यूट हो जाती है बट नॉट फॉर द एडल्ट्स ऑब्वियसली आउट देयर. सो वेल अगर आपके सामने भी ऐसी कोई वायरल पोस्ट ऐसी कोई कहानी सामने आ गई होगी कि सेप्टेम्बर 10 से रात को इंस्टाग्राम बंद होने वाला है देन डेफिनेटली डोंट फॉरवर्ड द पैनिक ठीक है. बट ये सवाल काफी मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि अगर इंस्टाग्राम सच में रोज 12 से 6 बजे बंद हो जाए रात को सो विल यू लाइक इट या फिर आपको 12:01 में ही विड्रॉवल सिम्टम्स कहीं शुरू हो जाएंगे. लेट मी नो 5000196 इज माई व्हाट्सएप नंबर कि आपको क्या लगता है रात के 12 से 6 बजे तक बंद रहना चाहिए इंस्टाग्राम या फिर इवन अर्लियर 10 बजे से या फिर होना ही नहीं चाहिए. आई रियली वॉन्ट टू नो योर व्यूज ऑन दिस. मीनवाइल माइक सदल तक आफरीन है आपके साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट. We'll be right back.

ओ कुड़ियो गुड़ किन खालिया गुड़ वाली चा किन पीती बुआ जिदा नाड़ा किन खिचया खिच के मर किन सीटी।

0: वेल दैट इज राघव और टेशर की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स और जुड़ गई है आपके साथ। देखो हम तो यहाँ पर एक छोटी सी कोशिश करते हैं कि अच्छे वाले गाने बजाकर आपके दिन की शुरुआत थोड़ी सी अच्छी करें, लेकिन आपकी कोशिश कुछ ज्यादा अच्छी रहती है। जैसे ही मैं आती हूँ, गुड मॉर्निंग के मैसेजेस जो आते हैं यहाँ पर, तो दिल खुश हो जाता है। ऑनेस्टली कहती हूँ कि मेरा तो दिन बहुत अच्छे नोट पर शुरू होता है। जैसे यहाँ पर हरपाल संधू फ्रॉम दुखान, इन्होंने कहा है कि गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नो मैटर व्हाट नॉक्स यू डाउन इन लाइफ, गेट बैक अप एंड कीप गोइंग, नेवर गिव अप। गुड मॉर्निंग जी। उसके अलावा यहाँ पर आलीशान का मैसेज आता है, गुड मॉर्निंग आफरीन, देन आई हैव इमरान सिंह, गुड मॉर्निंग फेवरेट फ्रीक्वेंसी, सेंडिंग यू 89.6 वॉट्स ऑफ प्योर सनशाइन एंड अ स्माइल टू स्टार्ट योर चार्ट टॉपिंग डे। व्हाट अ गुड मॉर्निंग मैसेज इट इज। उसके अलावा यहाँ पर गुड मॉर्निंग एक और है, लेकिन अपना नाम नहीं लिखा है, आई थिंक सो इट्स सैफुल्ला। विद दिस 5000186 इज आवर नंबर, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप भी, हेलो शेलो कह सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जरा तापमान पर भी नजर डाल देते हैं।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: वेदर अपडेट। वेल वेदर जो है वो कह रहा है कि आज का टेम्परेचर बस कल की तरह ही है ऑलमोस्ट, जहां 43 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम रहेगा, 34 पर मिनिमम रहेगा, और हवाएं जो हैं कुछ खास चल नहीं रही है, 13 किलोमीटर पर आवर पर है, ह्यूमिडिटी कल की तरह ही रहेगी। लेकिन कतर मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट ये भी कहता है कि हवाएं जो है वो कल से बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहने वाली है। जब हमारे कतर में ऑब्वियसली हवा जब स्ट्रांग रहती है तब बहुत सारा डस्ट अपने साथ ले आती है, और उस वजह से क्या होता है, थोड़ी सी विजिबिलिटी कम हो जाती है और वो सारी चीज़ें। तो भाई जो एलर्जी वाले हैं भाई बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हो सके तो अगर आप आउटडोर्स में हैं तो मास्क ही पहन लो, बिल्कुल सेफ, क्या कहते हो। चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ एंड टेशर जस्ट की आवाज में। दैट इज जलेबी, और जलेबी जैसी चीजें सुबह सुबह याद आ रही है, क्या यार ये भूख लग रही है।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: Sony Razdan, Alia aur Shaheen, in dono mein se, who's most likely to listen to you even today?
3: Difficult one. Why you
4: split between my children?
5: So both of them in different ways.
6: Yeah.
5: But yeah, they are receptive generally. But I think I must be irritating them a lot because I give too much advice. That's what you tell me. So, kya bolu aapko?
2: Sony Razdan, aapne koi jawab nahi diya. आलिया या शाहीन किसी का नाम नहीं लिया. अगली बार जब आप आएंगे हम फिर से ये सवाल पूछेंगे. यू आर लिस्टिंग टू मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
7: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है.
10: शी कैन रीड योर माइंड. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Sham, ek stage aur do kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah.

वेल देखो, आदत से मजबूर तो हम भी हैं यहाँ पर. कि आपको सही टाइम पर सही चीजें रिमाइंड करना, चीजें इन्फॉर्म करना, ये सब हमारी आदत में ही तो है. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स एंड 31st of August. आखिरी दिन है महीने का और देखते ही देखते डू यू रियलाइज दैट वी आर एक्चुअली मोर क्लोजर टू ईयर 2027 रादर देन 2025. हाँ, मतलब जब हम इनिशियल 6 महीनों में चलते रहते हैं तो ऐसा लगता है कि यार अभी तो साल गुजरा है और अभी तो साल शुरू हुआ है. लेकिन नो माय फ्रेंड्स, अब तो साल ख़त्म होने पर आया है एंड वी आर क्वाइट क्लोज. मतलब अब तो अगस्त ख़त्म हो गया, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने बचे हैं. ओ माय गॉड, ये वक्त की रफ्तार मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती कभी कभार. दिस जहाँ 31st अगस्त की बात की है तो यार बहुत सारे लोग आज बहुत ही खुश रहेंगे क्योंकि आज बस सैलरी का वक्त आ गया है, खुशियाँ मनाने का वक्त आ गया है. और वो सच कहूँ यार, वो जो 2-3 दिन जो इनिशियल होते हैं ना सैलरी मिलते ही, वो सही में ऐसा लगता है कि यार इस पे खर्च करते, उस पे खर्च करते. लेकिन यार कंट्रोल फिलहाल के लिए. अगर आपके रडार में एक चीज़ है और आप इंतज़ार कर रहे थे कि भाई सैलरी वैलरी आ जाए फिर हम इसके बारे में सोच लेते हैं, सो दैट इज़ आई थिंक सो सुहानी शाह का शो. अगर अब तक ये आपने बुक नहीं किया है, सो आई डोंट थिंक सो यू शुड बी हैविंग एनी अदर रीज़न टुडे. देखिए, क्यू टिकट्स पर भी अवेलेबल है, प्लैटिनम लिस्ट पर भी है, स्नोनो सिटी पर भी है, जहां पर 30 कतरियाल का तो इनफैक्ट कैशबैक भी मिल रहा है. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? 25th September इज द डेट जब सुहानी शाह द मेंटलिस्ट इज गोइंग टू बी इन कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. और सच बताओ, क्या आपने कभी एक मेंटलिस्ट वाला शो देखा है क्या? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने नहीं देखा एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर इट बिकॉज सिंगिंग शो बहुत देखे हैं हमने, डांसिंग वाले बहुत शो देखे हैं कतर में, लेकिन नॉट अ मेंटलिस्ट शो. वीडियोज बहुत देखे हैं, करते कैसे होंगे? ये सवाल ना आपको भी आएगा अगर आप वहां पर मौजूद रहेंगे तो. माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ और बीच बीच में अच्छे अच्छे गाने भी लेकर आई जाती हूँ, जैसे ये वाला अरिजीत सिंह और शालमली खोलकर की आवाज में. ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: अरे सर मेरा बच्चा सवाल पूछ पूछ के दिमाग खा जाता है, जवाब देने के थक गया हूँ मैं, क्या करूँ।
1: अरे तुम मुझसे क्यों पूछ रहा है, मैं थोड़ी ना तेरा बाप हूँ।

0: Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot. 89.6 Mirchi One. It's hot.
1: Well, मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन तो जुड़ गई है आपके साथ, लेकिन मिर्ची घड़ी का इशारा बता दे आपको हो रहा है सुबह की 7:01 की तरफ, और अगला गाना जो लेकर आई हो, आई थिंक सो इट शुड बी ऑन योर प्लेलिस्ट ऑन लूप, क्योंकि यार ऐसे गाने आज के जमाने में कम ही बनते हैं जो आपके दिल को छू जाए। एंड दैट इज रेखा भरद्वाज की आवाज और राघव कौशिक का साथ, मुसाफिर कैफे का ये गाना कमिंग अप नेक्स्ट ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

ड्रिवन बाय शैकमैन ट्रक्स, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर। शैकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स, पावर दैट सेव्स। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप।

धुरंधर का ये गाना जैस्मिन सनलिस की आवाज साथ देते हुए सतिंदर सरताज राइट हियर ऑन मिर्ची। और कुछ भी कहो यार, कतर जो है, अब आप तो यार यकीन करोगे इस बात पर कि कितने साल से हो आप यहाँ पर, 1 साल 2 साल 10 साल। फैमिली फ्रेंडली जगह तो है ही ये पूरी कंट्री। जैसे अब बैक टू स्कूल का ये जो सीजन चल रहा है, बच्चे फिर से स्कूल जा रहे हैं एंड काफ़ी लंबे समय के बाद जा रहे हैं, तो कतर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अब इनको मिलते हैं 10 hours a month फॉर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यस, अब कतर जो है इट्स मेकिंग देयर स्कूल मॉर्निंग्स थोड़ा और आसान फॉर द पेरेंट्स विद 10 months hour फॉर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो कैसे है कि नाउ दे कैन यूज 10 hours a month, वो है दैट इंक्लूड्स द टाइम टू फॉलो अप ऑन देयर चिल्ड्रन स्कूल इफ़ दे नीड एनी बैक टू स्कूल के कुछ और भी चीज़ें है, कुछ रिक्वायरमेंट्स है, सो उसे स्कूल जा रहे हैं एंड काफ़ी लंबे समय के बाद जा रहे हैं, तो कतर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अब इनको मिलते हैं 10 hours a month फॉर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यस, अब कतर जो है इट्स मेकिंग देयर स्कूल मॉर्निंग्स थोड़ा और आसान फॉर द पेरेंट्स विद 10 months hour फॉर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो कैसे है कि नाउ दे कैन यूज 10 hours a month, वो है दैट इंक्लूड्स द टाइम टू फॉलो अप ऑन देयर चिल्ड्रन स्कूल।

स्कूल ड्रॉप करे अगर कोई और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से अगर जाते हैं, तो ये शुरुआत के दिन कभी कभार वो बच्चे होते हैं ना जो जस्ट स्कूल स्टार्ट किए हैं एंड दे नीड देयर पेरेंट्स सपोर्ट. सो दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव आई मस्ट से. मैं हूँ आफरीन आपके साथ. वैसे बताओ पहला दिन कैसे गुजरा आपके बच्चों का? और ऑल द मम्मीज आउट देयर, आप लोगों ने तो खूब जम के आराम किया होगा या फिर चिल किया होगा अपने दोस्तों के साथ, क्या किया जरा बताओ मुझे. Meanwhile, अगला गाना जो बजा रही हूँ चक दे इंडिया से, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, कृष्णा और सलीम मर्चेंट की आवाज में, और मर्शीद साथ.

0: Mirchi.
1: Buscaba la, buscaba la, sacaba la. ¡Rápala! ¡Murga, murga! ¡La vieja la murga! ¡Mirchi, murga!
2: हेलो
3: हेलो बेटा नवनीत,
2: आप कौन?
3: पापा कहाँ हैं?
2: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
3: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका।

0: पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी भी बात पे। तो अभी अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
1: लेकिन आपको काम क्या है?
0: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
1: पापा ने कहा था?
0: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मदर को।
1: क्या हुआ अंकल?
0: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
1: अब मुझे क्यों डांट?
0: चुप कर।
1: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूं।
0: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूं मैं। क्यों कर रहा था तूने?
1: पापा को ऐसे किस बात का, मुझे ये भी नहीं
0: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
1: लेकिन बुरी क्या
0: लगी? अंकल देखो एक मारूंगा।
1: बदतमीजी क्या करी
0: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
1: कह रहा मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
0: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
1: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
0: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
1: क्या बोलूं?
2: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
1: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
0: चुप कर, मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
6: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoonu. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: वेल गुरु की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना साथ देते हुए आशीष कौर, और देखो खबरें ढूंढ कर लेकर आना, ये तो मेरा काम ही है। और सिर्फ कतर की खबर सुनाना ये मेरा काम नहीं है, हर जगह की खबर। और बात करें अगर बॉलीवुड की, तो वहां से तो मैं अंदर की बातें चुरा कर लेकर आती हूँ।
1: मिर्ची स्पॉट बॉय, बॉलीवुड की अंदर की खबर। आफरीन मैडम, पता है क्या?
0: देखो मुझे तो पता है, एक नहीं दो बातें पता है। नंबर वन, रेस की गाड़ी में नए पैसेंजर्स, यानी इंडस्ट्री रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है रेस फ्रेंचाइजी के रिबूट के लिए आमिर खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा और टाइगर श्रॉफ को एक साथ लाने की बात चल रही है, अंदर की खबर है। अभी कॉन्वर्सेशन स्टेज पर है, ऑफिशियल कास्टिंग अनाउंसमेंट अभी तक हुई नहीं है, बट इमेजिन दिस कॉम्बिनेशन यार, आमिर का माइंड गेम, सिद का स्वा फैक्टर और टाइगर का एक्शन। रेस है तो कास्टिंग भी थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल होनी चाहिए कि नहीं। वेल चलिए अब दूसरी अंदर की बात बताती हूँ मैं। कार्तिक आर्यन का कैप्टन इंडिया फाइनली टेक ऑफ के लिए रेडी है। वेल अगर कैप्टन इंडिया की बात करें तो ये काफी साल से ये प्रोजेक्ट हॉल्ट पर है। इनफैक्ट 2021 में ये अनाउंस हुआ था और उसके बाद से ये गाड़ी जो है, शायद कह सकते हैं कि फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हुई थी, लेकिन फाइनली अब ये लंदन में इसका शेड्यूल जो है शूटिंग का स्टार्ट होने वाला है। लेकिन मजे की बात ये है कि इसके जो डायरेक्टर हैं, ही इज शिमित अमीन, जिन्होंने चक दे इंडिया डायरेक्ट किया था। अब सोचो हमारा बेंचमार्क ऑलरेडी हाई सेट हो चुका है। ये वो मूवी है जहां कार्तिक एक पायलट प्ले कर रहे हैं इन अ स्टोरी इंस्पायर्ड बाय अ रियल इंडियन इवैक्यूएशन मिशन। मजा आएगा, देखेंगे कैसा है। वेल आज के लिए बॉलीवुड के दरवाजे से बस इतनी ही पीछे से आवाजें सुनाई दी है। वेल माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ। ये थी बॉलीवुड के अंदर की बात, जहां अनाउंसमेंट से पहले रूमर्स मिलते हैं और रूमर्स के बीच कभी कभी असली खबर भी। बने रहिएगा विद अस ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

स्माइल हो परफेक्ट सिर्फ नसीम डेंटल के साथ। विजिट करें मुंतजा या अजीजिया, योर ट्रस्टेड स्माइल पार्टनर। Adventure Park Partner Jungle Zone. Double the fun, half the price at Jungle Zone Head Plaza. Enjoy 50% off on your favorite rides and games every day until 4 p.m. Don't miss out. Restaurant Partner Chasu.

0: केके की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गाना, एंड समटाइम्स जब भी केके की आवाज़ में कोई गाना सुने तो ऐसा लगता है कि कितने और अच्छे गाने आने बाकी थे, कुछ अधूरा सा रह गया है। केके गॉन टू सून। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफरीन का साथ है राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और वक्त हो चला है कि लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट खेला जाए। कोई मूवी से सीन सुनाने वाली हूँ मैं दोस्त, और आपने गेस करना है कि आखिर आफरीन कौन सी मूवी का ये सीन सुना रही है। और आज का सीन शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यार चलो हफ्ते में घुस गए ना, तो मैंने सोचा कि अब से थोड़ा सा डिफिकल्टी का रेंज जो है वो बढ़ाते हैं। सो हियर इट गोज।
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट। सीन टेस्ट।
2: अरे जब सिंगल थे तो प्रॉब्लम थी, और मैरिड होने की सोच रहे तो भी प्रॉब्लम है।
3: बेटा प्रॉब्लम कुछ नहीं है, देखो हम पहले भी तुमको नहीं टोके हैं और आज भी नहीं टोकेंगे, पर जो करना सोच समझ के करना।
4: अरे सोच समझ के क्या, शादी कर रही है लड़के से, हम तो इसी बात से खुश हैं।
2: हाँ तुम तो खुशी होगी, भला चोटली
4: खुशी की तो बात ही है।
0: ओके कौन सी मूवी है ये, सोच रहे हो ना, मतलब यार आवाजें, एक तीन लोगों की आवाजें थी उसमें से एक तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने यू गेस किया होगा। एक्ट्रेस भी जो है वो नई टाइप वाली ही है, इतनी भी कोई पुरानी मूवी नहीं है, ऐसे बीच बीच की नई मूवी में से ही मैंने ये सुनाया है सीन। कौन सी मूवी है अगर आपको पता चल गया है तो 5000 1896 इज माई व्हाट्सएप नंबर, इधर आइए व्हाट्सएप कीजिए, बताइए मुझे। एंड सीरियसली इसका सही जवाब दिया ना दोस्त, तो मतलब एकदम जबरदस्त बॉलीवुड फैन तो है ही है आप। चलिए बॉलीवुड की जहां बात करते हैं कर रहे हम तो चलिए एक लेजेंडरी मूवी से एक जबरदस्त गाना और एक लेजेंडरी सिंगर की आवाज में, दैट इज लता जी की आवाज और उदित नारायण की आवाज में ये गाना,
5: ना जाने मेरे
0: माइक से दिल तक। आफरीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: दिल्ली बेली जलसा ब्राउन जैसे कंटेंट के क्रिएटर मिस्टर अभिनय देओ
2: मोस्ट लाइकली टू रिमूव बाल की खाल, मतलब तह तक जवाब वो बताओ।
3: वेट
2: टेल,
3: आई हैव अ लिस्ट, भयंकर समय लग जाएगा तो उसके अंदर ना घुसे तो ही बेटर है, बट मेरे सब लोग आजू बाजू में वही हैं, सब बाल की खाल निकालने वाले ही है। आई टेल यू व्हाट, आई मीन ही इज पास्ड अवे, बट माई फादर, माई गॉड, एनीथिंग दैट आई डू, एनीथिंग दैट एनी स्क्रिप्ट आई सेड, बट ऐसा क्यों, अरे भाई साहब फिल्म है, इमेजिन, नो, बट व्हाई? And he was a filmmaker, an actor himself.
1: Abhinay Deo, the director, is talking about his father, Ramesh Deo, one of the finest actors the Hindi and the Marathi cinema has seen. Aap sun rahe hain Mirchi, it's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood Boldal. Only on Mirchi, it's hot.
4: Ready?
5: Ready.
4: To learn?
5: Yes.
4: To play?
5: Absolutely.
4: To grow?
5: With Maserati.
6: This school season, fuel every day with delicious and nutritious Maserati fresh products.
5: Milk, cheese, yogurt, labneh, eggs.
6: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
7: Har baar wahi regular recharge kyun? Apne hala number ke liye Orido ka your special offer paye. More value, made for your needs. Abhi Orido app par check karein ya kareebi retailer se milein. Experience more with Orido.
8: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
9: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
10: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
8: उसे सब पता है।
11: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
8: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर, दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू ऐड द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट, गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT Snow. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। The Mentalist Suhani Shah live

0: अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में ये गाना फ्रॉम द मूवी जवान राइट हियर ऑन मिर्ची। मैं हूँ आफरीन आपके साथ। और जो मुझे लगा था वैसा तो हुआ नहीं, मतलब यार वेलकम बैक मिर्ची मॉर्निंग्स पर आप जी ने आपके साथ। और यहाँ पर मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, इनफैक्ट एक सीन सुनाया था और मैंने सोचा कि अरे बड़ा ही डिफिकल्ट सीन है, आज तो बहुत सारे गलत जवाब आने वाले हैं। हालांकि हमेशा की तरह एक आधा दो आए हैं लेकिन एज एक्सपेक्टेड ज़्यादा नहीं आए हैं। कौन सी मूवी है जिससे मैंने कहा था कि भाई ये तो डिफिकल्ट है बॉस, ये कैसे? अब गेस करो कि आप सो पहले सीन सुन लो और उसके बाद में मैं इस मूवी के बारे में भी बात करूंगी। लेकिन यार शिकायत भी आई है कि आफरीन यार इतना भी डिफिकल्ट मत पूछो। देखते हैं चले।
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट।
2: अरे जब सिंगल थे तो प्रॉब्लम थी, और मैरिड होने की सोच रहे तो भी प्रॉब्लम है।
3: बेटा प्रॉब्लम कुछ नहीं है, देखो हम पहले भी तुमको नहीं टोके हैं और आज भी नहीं टोकेंगे, पर जो करना सोच समझ के करना।
4: अरे सोच समझ के क्या, शादी कर रही है लड़के से, हम तो इसी बात से खुश हैं।
2: हाँ तुम तो खुशी होगी बला चोटली,
4: खुशी की तो बात ही है।
0: हाउ स्वीट एंड बहुत ही प्यारी मूवी लगी मुझे ये। स्मॉल टाउन की मूवी थी ये, जहाँ पर स्मॉल टाउन के एक्टर की अगर बात करें ना, तो बॉलीवुड में मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक ही एक्टर है जो हर मूवी में एक स्मॉल टाउन हीरो का किरदार निभाता है। You can guess it where I'm going towards. Well, बहुत सारे लोगों के answers आए हैं यहाँ पर। मोहम्मद यूसुफ खान का message है, then I have your सलमान का message है, then I also have किसका message है ये? Yes, पंकज त्रिपाठी की आवाज़ तो है, बिल्कुल सही है। देव आपका आंसर गलत है, दिस इज़ नॉट मीमी चार्ली, दिस इज़ नॉट मेट्रो इन दिनो। एंड यस जिन्होंने सही जवाब दिया है यार मेंशन तो बनता है इनका, कुमैल का बिल्कुल सही जवाब है, और फिर सलमान जैसे मैंने बताया, मोहम्मद यूसुफ खान, और यस इसी के साथ बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं। युगल तुमने मैसेज किया है वॉइस मैसेज, वोंट बी एबल टू हियर योर मैसेज राइट नाउ बट आई होप इट्स द राइट आंसर। सो तो आंसर है बरेली की बर्फी। अब याद आया कि कीर्ति सनाओ की आवाज़ थी, पंकज त्रिपाठी की आवाज़ थी और सीमा पावा की आवाज़ थी। एंड आई जस्ट लव दिस मूवी, बहुत ही सिंपल सी फील गुड वाली मूवी थी। और ऐसी मूवीज आई थिंक सो बॉलीवुड में और भी ज़्यादा बननी चाहिए। विद दिस इस मूवी का एक बहुत ही प्यारा सा गाना है आरको प्रभो मुखर्जी की आवाज़ में, माइक से दिल तक आफरीन के साथ। मजा रहेगा अमरजीत साथ।

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6
0: Mirchi One. It's hot.
2: मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 8:02 की तरफ और आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट टू रन मिर्ची इट्स हॉट
3: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर खतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर

वेल, सुभोज शर्मा की आवाज में आवारापन का ये गाना राइट ऑन मिर्च ही पर ये गानों का सिलसिला जो है ये अच्छा लग रहा है, तो बस जो गैर है ये अभी 2026 से थोड़ा सा पीछे लेकर जाते हैं, यानी 2000 के एरिया एरा में, जहां पर मुसाफिर मूवी का ये गाना और ऋचा शर्मा की आवाज इज समथिंग। 2004 का ये गाना है, आई रिमेम्बर, एंड दैट वाज अ टाइम जब हम स्कूल कॉलेज में हुआ करते थे, और ये गाना तब भी हमको कितना अच्छा लगता था, सुकून देता था। You know which song I'm talking about? Enjoy this beautiful gana on Mirchi.

देखिए आपके वॉलेट में कार्ड्स कितने हैं और उसमें से एक कार्ड अगर हिमियन है तो आज की अपडेट स्पेशली आपके लिए है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और पहले क्विक क्वेश्चन, हिमियन एग्जैक्टली है क्या, आपको पता है? वेल, हिमियन इज एक्चुअली कतर्स ओन नेशनल पेमेंट कार्ड ब्रांड लॉन्च बाय कतर सेंट्रल बैंक। यस, इन सिंपल वर्ड्स अगर बताऊं तो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग एंटायरली ऑन इंटरनेशनल कार्ड, ये जो है हिमियन कतर का अपना लोकली मैनेज्ड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर डेबिट एंड प्रीपेड कार्ड्स। अब इसको आप एक अनदर स्टेप सोच सकते हैं ऑफ मोर सेल्फ रिलायंस, सिक्योर एंड डिजिटली सोफिस्टिकेटेड पेमेंट इकोसिस्टम। अब इसके लेटेस्ट अपग्रेड के बारे में बात करते हैं कि अगर आपके पास हिमियन डेबिट या प्रीपेड कार्ड है तो आप इसको डायरेक्टली सैमसंग वॉलेट में ऐड कर सकते हैं एंड यू कैन मेक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट डायरेक्टली थ्रू योर फोन। सैमसंग गैलेक्सी फोन्स है या स्मार्ट वॉचेस है तो आप इसको वहां पर सेटअप कर सकते हैं। सेटअप भी काफी सिंपल है। सैमसंग वॉलेट ओपन करो, ऐड कार्ड सेलेक्ट करो, अपना एलिजिबल हिमियन कार्ड की डिटेल्स डाल दीजिए, वेरिफिकेशन अपने इशुइंग बैंक के थ्रू कंप्लीट करो और फिर क्या, आपका कार्ड ऐड हो जाएगा और आप कहीं पर भी आपके फोन से डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। विद दिस मैं हूं आपके साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लाती रहूंगी राइट ऑन विद शी, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iscabana, Puscabana, Sacabana, Cabana, Burca, Burca. La Virpa, la Burca. Milci, Burca.
2: Hello?
3: Hello? Hello?
2: भैया आवाज साफ नहीं आ रही, कम आ रही आवाज।
3: भाई साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
2: हाँ जी।
3: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
2: अच्छा अच्छा।
3: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दिए, ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
2: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज करेगी यार।
3: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर रमेश, इसे बंद कर दे यार। आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खोलने से पहले।
2: मैं
3: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
2: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
3: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
2: तो ड्रिल मशीन हमारा लेके तो चोरी करने गया।
3: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
2: चोरी करने ले गया
3: तुमने, पहले क्यों नहीं बताया?
2: कौन चोरी कर रहा है, मुझे फंसवाएगा। मुझे मरवाएगा, मुझे फोन कर दिया। हेलो
3: यार, कमाल है आप तो, मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
4: सर सर सर सर, मेरी बात सुनिए। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था। आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
2: कहाँ से बोल रहे भैया?
4: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
3: अब ठीक है।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स पटाक।
7: रेडी
8: रेडी
7: टू लर्न?
8: यस।
7: टू प्ले?
8: एब्सोल्युटली।
7: टू ग्रो?
8: विद मेजराती।
7: दिस स्कूल सीजन फ्यूल एवरी डे विद डिलिशियस एंड न्यूट्रिशियस मेजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स।
8: मिल्क, चीज, योगर्ट, लैवेंडर,
7: from breakfast to lunch box and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
9: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
10: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah, live.

वेल, आज है 31st अगस्त और मंथ एंड की सबसे खूबसूरत नोटिफिकेशन का इंतजार तो सभी को होता है। And that is salary credited. Very good morning and welcome back. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और सैलरी आते ही कतर में हम एक्सपेक्ट्स का एक ऑटोमेटिक कैलकुलेशन जो है वो शुरू हो जाता है। घर कितना भेजना है, रेंट बिल्स और एक्सपेंसेस अपनी जगह, बट दैट ट्रांसफर बैक होम इज प्रोबेबली द मोस्ट सैटिस्फाइंग ट्रांजेक्शन ऑफ द मंथ, है ना। और यहाँ एक छोटी सी स्मार्ट मनी हैबिट, ट्रांसफर करने से पहले ना एक्सचेंज रेट जरूर चेक करिएगा, बिकॉज जब अमाउंट बड़ा हो ना रेट में छोटा सा डिफरेंस भी फाइनल अमाउंट में नोटिसेबल डिफरेंस लेकर आ सकता है। सो आज का एक्सचेंज रेट आईपे से बेहतर और कहां मिलेगा आपको। जैसे आज एक कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं आपको इंडियन रुपीज 26.15, वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीज इज एट 76.19, बांग्लादेशी टाका इज एट 33.81, श्रीलंकन रुपीज इज एट 90.02 और नेपाली रुपीज इज एट 41.76। तो घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां। और खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला 89.6 पर शिवान माइक से दिल तक आफरीन के साथ इट्स हॉट।

0: ड्रिवन बाय शैकमैन ट्रक्स, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर. शैकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स, पावर दैट सेव्स. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप. Need to send money home? Make it fast, make it safe, make it Alpha Dhan Exchange.
1: Your trusted choice for sending money, foreign currency exchange and gold bars and coins. Visit our nearest branch or download the Alpha Dhan Exchange app now. For assistance, call or WhatsApp 4453-7777.

0: सुखी भाजी और अलका याग्निक की आवाज में ये गाना फ्रॉम द मूवी ताल, और इसको मेरे ख्याल में बहुत ही सही जस्टिस दिया था अनिल कपूर ने। कितनी परफेक्टली ये आवाज उनको सूट कर रही थी और उनका एक अंदाज कुछ निराला था इन दिस मूवी। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफरीन का साथ है ऑन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। इट इज 31st of August, आखिरी दिन ऑफ दिस मंथ, और लेकर आई हूँ वो गेम जिसे मैं कहती हूँ मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स। देखिए, मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स खुलता है और एक ऐसा चैलेंज निकलता है जो आपको भी नहीं पता होता है कि भाई आज क्या लेकर आ रही है आफरीन। तो आज मैं आपका वो फेवरेट वाला चैलेंज लेके आ रही हूँ जहाँ पर तीन मूवीज का कनेक्शन होता है, बॉलीवुड कनेक्शन चेन कह सकते हैं, और जहाँ आपके गेस करना है कि ये एक नहीं, दो नहीं, तीन मूवीज कौन सी है आखिर। सो ध्यान से सुनो, आज के हिंट्स कुछ ऐसे है। वो कौन सी मूवी है जिसमें एक बिजनेसमैन एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसता है, बहुत सारे इंडियंस को सेफली इंडिया वापस लाने में मदद करता है। उस मूवी का हीरो की एक और फिल्म है, उसे प्यार तो लंदन में होता है लेकिन अपनी लव स्टोरी को मंजिल तक पहुंचाने के लिए उसे देसी अंदाज अपनाना पड़ता है, और उस फिल्म की हीरोइन का रियल लाइफ हस्बैंड कि वो कौन सी मूवी है जिसमें उनकी शादी होती तो है लेकिन वाइफ इस शादी में एक सीक्रेट मिशन के साथ आई है। नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग, बताइए कौन सी मूवीज की बात कर रही है यहाँ पर आफरीन। फिर से मैं यहाँ पर मेरा डिस्क्रिप्शन है वो जो है बता देती हूँ, तो वो कुछ ऐसा है। बताइए वो कौन सी मूवी है जिसमें एक बिजनेसमैन एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसे बहुत सारे इंडियंस को सेफली इंडिया वापस लाने में मदद करता है। उस मूवी का हीरो की एक और फिल्म में उसे प्यार तो लंदन में होता है लेकिन अपनी लव स्टोरी को मंजिल तक पहुंचाने के लिए उसे देसी अंदाज अपनाना पड़ता है। और अब थोड़ा रियल से रियल कनेक्शन बताते हुए, उस फिल्म की हीरोइन का रियल लाइफ हस्बैंड कि वो कौन सी मूवी है जिसमें उनकी शादी होती तो है लेकिन वाइफ इस शादी में एक सीक्रेट मिशन के साथ आई है। 5000196 इज माई व्हाट्सएप नंबर, लेट्स कनेक्ट हियर, और बताइए कि आफरीन आखिर कौन सी मूवीज की बात कर रही है। और जो तीनों मूवीज सही जवाब देगा ना, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ स्पेशल मेंशन ऑन एयर टुडे। सो 5000196 इज माय नंबर। तब तक के लिए डोमिनिक सरेजो, सुल्तान सरेजो, लॉय मेंडोसा की आवाज में
1: सूरज की बाहों में अब
0: एंजॉय दिस गाना, माइक से दिल तक आफरीन के साथ।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Charisma Kapoor.
3: Who's most likely to sleep with the lights on because they're so scared to death?
4: I have to answer this?
3: No, I'm asking just like that. Karishma, ma'am, ek ka to jawab de do.
4: Probably Kareena.
3: Haan.
4: Out of both of us.
2: Bebo ko dekh ke lagta nahi ye wo darti hongi. Because she's always in safe hands. If you know what I mean. Aap sun rahe hain Mirchi. It's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi. It's hot.
5: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड. अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर. एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल. और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू iPhone 17 Pro Max. लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे. TNC अप्लाई. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है.
8: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

0: आतिफ असलम और गुल पंड्रा की आवाज में कोक स्टूडियो का ये गाना राइट हियर ऑन मिर्च आप सुन रहे हो। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। महीने का आखिरी दिन पर आ गए हैं एंड दिस फैक्ट इटसेल्फ मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही है और मैं सुबह से चार बार यही बात कह चुकी हूँ कि नहीं भाई महीने का आखिरी दिन है। बहुत फास्ट दिन जा रहे हैं यार, ये सही में मुझे बहुत घबराहट हो रही है दिस। यहाँ पर आपको मैंने एक क्वेश्चन सुनाकर घबराहट और दुविधा में तो जरूर डाल दिया था, वो क्या है पहले जरा हमारा मिस्ट्री बॉक्स तो खोले। सुबह कुछ इस तरह से है कि आपको तीन मूवीज के बारे में बताया था, एक का कनेक्शन दूसरे से, दूसरे का कनेक्शन तीसरे से, आपने गेस करना था कि आखिर ये कौन सी तीन मूवीज है और बहुत सारे लोगों ने सही गलत सारे जवाब है उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। लेकिन आज का सवाल क्या है ये सुन लेते हैं। वो कौन सी मूवी है जिसमें एक बिजनेसमैन एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसे बहुत सारे इंडियंस को सेफली इंडिया वापस लाने में मदद करता है। उस मूवी का हीरो की एक और फिल्म है जिसमें उसे प्यार तो लंदन में होता है लेकिन अपनी लव स्टोरी को मंजिल तक पहुंचाने के लिए उसे देसी अंदाज अपनाना पड़ता है। और उस फिल्म की हीरोइन का रियल लाइफ हस्बैंड की वो कौन सी मूवी है जिसमें उनकी शादी होती तो है लेकिन वाइफ इस शादी में एक सीक्रेट मिशन के साथ आई है, कौन सी मूवीज है? चलिए सुनते हैं हमारे लिसनर्स से।
1: हाय आफरीन।
0: हाय।
1: द मूवी फर्स्ट मूवी इज एयरलिफ्ट।
0: ओके।
1: सेकंड मूवी इज नमस्ते लंदन।
0: All
1: and
0: right.
1: Third movie is Razi.
0: सही
1: जवाब। Have a lovely time. Bye bye.
0: Okay, thank you, Princeton. That is the right answer. In fact, सिर्फ Princeton नहीं, यहाँ पर ताहिर का भी बिल्कुल सही जवाब आया है, शुभम रस्तोगी का बिल्कुल सही जवाब है, then I have your Sunny saying all the right answers. हालांकि है कुछ कुछ गलत जवाब भी यहाँ पर, मोहम्मद शाहिद का बिल्कुल सही जवाब है और यस इम्पा का गलत है। बट यस थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर मैसेजेस गाइज, दिस वॉज एक्चुअली थोड़ा ट्रिकी था लेकिन आप लोग तो बॉलीवुड के एकदम ट्रू फैंस है, पहचान ही लेते हो। विद दिस मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट ट्रैक, जुबिन गर्ग और अलीशा चेन्नई की आवाज में नमस्ते लंदन का ये गाना। ऑनेस्टली आई फील कैटरीना कैफ की ये बेस्ट मूवी थी, हर एक्टिंग वॉज ऑन पॉइंट है ना। Enjoy this on the street spot.

0: Mirji Mornings with Mirji Afreen. It's hot.
1: 89.6
0: Mirji One. It's hot.
2: मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन का साथ जुड़ गया है और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 9:02 की तरफ. प्लेइंग नेक्स्ट अ ब्यूटीफुल गाना रहना है तेरे दिल में से वन ऑफ माय फेवरेट रूप कुमार राठौर से ऑन मिर्ची हॉट
3: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

कभी कभार ना एक पूरा गाना बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं होती है, एक खूबसूरत सा लव्ज ही अगर दिमाग में अटक जाए ना, उसके आसपास एक खूबसूरत सा गाना अपने आप बन जाता है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और आज एक बहुत ही खूबसूरत गाने के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, बिकॉज देर आर सॉन्ग्स यू एंजॉय एंड देन देर आर सम सॉन्ग्स हुज लिरिक्स मेक यू स्टॉप एंड लिसन अगेन। हंसी तो फंसी का ये गाना जहन नसीब, इस गाने की कहानी भी एक लव से जुड़ी है। शेखर रावजनी ने अमिताभ भट्टाचार्य से कहा था कि कोई नया वर्ड सा बताओ। कॉन्वर्सेशन में पहले बेतहाशा आया और फिर अमिताभ ने एक और लफ्ज बताया, दैट वाज जहन नसीब। शेखर को ये लफ्ज इतना पसंद आया कि इवेंचुअली ने दोनों वर्ड्स को गाने में इंक्लूड करना चाहा, एंड दैट वाज तुझे चाहूं बेतहाशा जहन नसीब। बट यू नो व्हाट, मेरे लिए इस गाने का सबसे खूबसूरत पार्ट है ये।

What beautiful meaning this has, है ना? गम की खुरचने, what an expression. Because गम हमेशा कोई बहुत बड़ा तूफान बन के नहीं आता. कभी एक disappointment, कभी एक बुरा दिन, कभी कोई छोटी सी बात जो दिल पर scratch छोड़ जाए. और फिर वो कहते हैं ना कि तेरे मेरे खर्चे में दोनों का ही एक दाम है. मतलब तुम्हारी खुशी मेरी, तुम्हारा गम भी मेरा. No calculations, no हिसाब किताब. Perhaps companionship इसी को कहते हैं, है ना? Perfectly described in this song, Zen. Nasib, playing next right here for you on Mirchi. Mike se dil tak aap sheen ke saath ban bhi hai ka. It's hot.

0: हेलो
1: हाँ बोलो कौन।
0: हेलो इधर से बोल रहा हूँ, आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
1: हाँ बोल कौन रहा है।
0: बोल कौन रहे हो, कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की। नीचे से बोल रहा हूँ, आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ।
1: बोल कौन रहे हो,
0: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
1: हाँ बोला था।
0: ओ भैया मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार, आप लोग खाते क्या हो, कितना गहरा कर दिया आपने।
1: पूछ के घुसे थे क्या अंदर।
0: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ।
1: हाँ बोलो।
0: यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से। बंद करो सर। ओ भैया मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार, आप लोग खाते क्या हो, कितना गहरा कर दिया आपने।
1: कौन बोल रहा है, कहाँ घुस गए यार।
0: हेलो इधर से बोल रहा हूँ, आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
1: हाँ हाँ बोला था, हुआ क्या है कुछ तो बताओ।
0: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ। यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से। बंद करो सर।
1: कब आया था, कब घुसा अंदर।
0: फिर सवाल यार, मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ, मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके।
1: कहाँ करा है, तो नहीं हो गया है।
0: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी, नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में, बाहर निकालो यार।
1: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने।
0: ऑफिस क्यों गए, सीवर साफ करवाना था, मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर।
1: मेरी सीवर में घुसा है, किसी और की सीवर में घुस गया।
0: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार।
1: सीवर में मरा रहा है तू,
0: गाली तो मत दो।
1: हेलो
0: हेलो,
1: फिर फोन कर दिया तूने।
0: अच्छा सीवर साफ होने का काम करो, एक चीज बोलो।
1: क्या बोलो।
0: कुकड़ू को
2: सर आई एम सो सॉरी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया।
1: कुकड़ू को
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot.
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
6: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

0: And my friends, just like that, we have reached the last day of August. वैसे मंथ का जब लास्ट डे आता है ना, तो सडनली हम सब थोड़े से ना फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को. और आज का दिन किसी के लिए सैलरी डे हो सकता है, फॉर सम इट्स पहले बिल क्लियर कर लेते हैं डे, एंड फॉर सम सैलरी आने से पहले ही उसकी पूरी प्लानिंग हो चुकी होती है. बट हियर्स अ स्मॉल मंथ एंड थॉट बिफोर यू प्लान वॉट टू स्पेंड, डिसाइड वॉट यू वॉन्ट टू सेव और इन्वेस्ट. जरूरी नहीं कि अमाउंट बहुत बड़ा हो, समटाइम्स स्मॉल बट कंसिस्टेंट फाइनेंशियल हैबिट्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस ओवर द टाइम. जैसे बात करते हैं अबाउट इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड. अब जहाँ गोल्ड की बात हुई है, लेट्स चेक टूडेज पैम्प गोल्ड रेट्स. 1 ग्राम लेडी फॉर्चुना गोल्ड वायर इज फॉर 600 कतरी रियाल, वहीं 5 ग्राम इज फॉर 2,822 कतरी रियाल, 10 ग्राम इज फॉर 5,575 कतरी रियाल, वहीं 1 ounce इज फॉर 17,236 कतरी रियाल, एंड 10 तोला यानी 10 तोला गोल्ड बार इज फॉर 64,016 कतरी रियाल. अगस्त खत्म हो रहा है, सेविंग की आदत नहीं होनी चाहिए. सो वेल, सोना लेना हो या ना लेना हो, लेकिन सोने का भाव हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए आपको. माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
1: Stay ahead of today's gold rates with Al Fardhan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars
2: and earn Qatar Airways Avios today.
1: Visit our branches or download the app now.

0: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। टीएनसी अप्लाई।
1: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: लता जी की आवाज, एमजी श्री कुमार का साथ और दिल से का ये गाना डायरेक्टली आपके दिल तक पहुंच गया है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है ऑन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और हम अक्सर मुश्किल वक्त में खुद को एक ही बात समझाते हैं कि कोई बात नहीं, ये वक्त है, गुजर जाएगा, निकल जाएगा ये भी। एंड स्ट्रेंजली ऐसा नहीं है कि ये चार वर्ड्स एक्चुअली कितनी तसल्ली दे देते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी इसी तसल्ली के बीच एक और ख्याल आ जाता है कि जिस वक्त के गुजर जाने का हम इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं उसी इंतज़ार में ज़िंदगी तो नहीं गुजर जाएगी। सो बस इसी ख्याल पर आज आफरीन की शायरी है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी। शायरी
0: अर्ज किया है, तसल्ली है कि ये वक्त भी निकल जाएगा, तसल्ली है कि ये वक्त भी निकल जाएगा, और बेचैनी है कि वक्त निकला जा रहा है। बस वक्त तो गुजरने का इंतजार कम कीजिए और उसमें जीना थोड़ा ज्यादा शुरू कीजिए। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ। अनमिट्री इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: सिर्फ बंगाल के नहीं हिंदुस्तान के हिट हीरो, नाम है इनका जीशु सेनगुप्ता। इनसे एक बार पूछा गया,
3: हूज मोस्ट लाइकली टू डाई टू प्रोटेक्ट यू? अपनी जान दे देंगे लेकिन आपको जरूर बचाएंगे।
4: आई हैव फ्यू पीपल, यस आई कैन से दे माय फ्रेंड्स, दे माय फैमिली, लाइक एट लीस्ट टू पीपल टू आई नो, आई एम नॉट नेमिंग देम बट
3: दे नो हु दे आर,
4: टू पीपल They will die for me. Yeah, I'm blessed. I'm blessed.
2: जीशु सेनगुप्ता, उस टू की लिस्ट में एक और नाम जोड़ दीजिए, थ्री कर दीजिए, because I will also, yeah. You're listening to Mirchi, it's hot.
0: Bollywood Boldar. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldar.
1: Only on Mirchi, it's hot.
5: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है।
8: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
5: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर, दिस 25th सितंबर एट QNCC, एंड टू ऐड द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट, गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट STT Snow No। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। The Mentalist, Suhani Shah.

You know what? मुझे लगता है ना लाइफ में थोड़ा सा इन लव रहना बेहद जरूरी है. एंड नो, मैं सिर्फ किसी इंसान के प्यार की बात नहीं कर रही हूँ. होता है ना कभी कभी किसी गाने से हमें प्यार हो जाता है जो रिपीट पे चल रहा होता है, कभी किसी शहर से, कभी किसी किताब से, किसी अच्छे से ड्रेस से, के कपड़े से, कभी फ्रेंड्स के साथ एक रैंडम इवनिंग से, और कभी एक ट्रैवल प्लान से जो भी बना भी नहीं है लेकिन एक्साइटमेंट आपकी फुल ऑन है, है ना. एंड इसी में आई रेड दिस ब्यूटिफुल थॉट टुडे कहीं पर, दैट आई डोंट नो हाउ टू लिव विदाउट पैशन, आई कैन नॉट डू लाइफ विदाउट लव. एंड आई थॉट दैट दिस इज सो मी, एंड प्रोबेबली मैनी ऑफ यू कैन कनेक्ट टू दिस, क्योंकि यार मेरी लाइफ में भी ना एक लव अफेयर काफ़ी सालों से चल रहा है, दैट इज विद दिस माइक, विद द रेडियो एंड विद कनेक्टिंग विद पीपल. इस माइक के इस तरफ मैं हूँ, उस तरफ आप, और बीच में कभी म्यूजिक, कभी मस्ती, कभी कोई रैंडम सा ख्याल, और कभी कुछ दिल की बातें. एंड मे बी दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई लव व्हाट आई डू, क्योंकि मेरे लिए ना माइक सिर्फ आवाज पहुंचाने का एक जरिया नहीं है, दिल तक पहुंचने का एक रास्ता है. एंड इसीलिए माइक से दिल तक आफरीन के साथ फिलहाल आज ये माइक ऑफ करने का वक्त आ गया है. लेकिन वो बॉस, ये पैशन कभी भी ये ऑफ नहीं होगा. सो जल्द मिलेंगे, फिर मिलेंगे, तब तक के स्टे इन लव बॉस विद समथिंग दैट रियली मेक्स यू हैप्पी. टाटा, बाय बाय, सायोनारा, और बने रहिएगा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी। बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: मैं रोज सुबह योगा क्लास में जाता हूँ और योगा करते करते गैस निकल जाती है, मैं क्या करूँ?
1: गैस निकल जाती है हु? तो घर से निकले तो पहले ही नॉब चेक करके जाया कर।

0: बस आपके दिल से निकला ये तोहफा जो है आज सुबह सुबह मैंने कबूल कर ही लिया।
1: मिर्ची अंशु
0: गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल, एक बार फिर से आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए मैंने दस्तक जो है वो दे ही दी है। एंड आज के दिन ना मुझे बड़ी खुशी हो रही है, नहीं ऐसा हर रोज हर सुबह मुझे जरूर लगता है। वैसे अगर इस गाने की बात करूँ, जिस गाने के साथ आप सब ने मेरा इतना सॉलिड वाला वेलकम किया, वो लड़की जो सबसे अलग है इस गाने को हमने सुना फिल्म बादशाह में, इसे गाया अभिजीत भट्टाचार्य में, एंड म्यूजिक था अनु मलिक का। एंड अभिजीत की आवाज़ जो है ना एक वक्त में कितनी ज्यादा रिजेंबल करती थी शाहरुख खान से, ऐसा लगता था कि भाई ये असल में सही मायने में शाहरुख खान की ही आवाज है। इनके साथ अगर कोई नजर आई तो वो है ट्विंकल ट्विंकल लिल स्टार, वेरी फेमस स्टार ट्विंकल खन्ना। बढ़िया है जी। चलिए अब आज सुबह सुबह आपको एक बात बताते हैं। मेरे पापा ना मुझसे अक्सर एक बात कहा करते थे कि जिंदगी में अगर अलग होने की बात करें तो ये कोशिश जरूर करना कि हर नए दिन हर रोज तुम जो ना कल से थोड़े अलग थोड़े जुदा हो। ना अपना बिहेवियर नहीं बदलना है। पता चला कल के दिन तक बीवी को दो बातें सुना रहे थे, आज चार बातें सुनाने लगे या कुछ चीज़ें कम भूल रहे थे, आज ज़्यादा भूलने लगे। नहीं यार, जो भी चेंजेस आप खुद में लाने की कोशिश करते हैं या सोचते हैं कि मुझे ऐसा बनना है, भाई 1% कोशिश भी हर दिन अगर हमने की ना शिद्दत और ईमानदारी के साथ, एंड 0.1% भी सक्सेसफुल होते हैं, तो ज़रा सोचें कि साल के खत्म होते तक हमारे अंदर कितना बड़ा चेंज है वो देखने को मिलेगा, एंड 101% मिलेगा। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि आज के दिन अपने आप को जरा बेहतर बनाना है, कल से थोड़ा आज अलग बनना है। बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, सॉलिड नाचने गाने के लिए हो जाएं तैयार, लेकिन सीट बेल्ट जो ना टाइट बांध के रखिएगा। मेरे साथ कनेक्टेड है, एक गुड मॉर्निंग वाला मैसेज आपका वेट कर रही हूँ। 5000 1896 इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु 5000 1896 वेटिंग फॉर योर गुड मॉर्निंग मैसेजेस। हाँ जी, हाई हील ते नचे
2: Meet Bros. Just tell me.

0: Milchi. Escabana, pues cabana, sacabana. Gran bala. Burga, burga. La vieja la burga. Milchi, burga.
1: हेलो
2: हेलो बेटा नवनीत,
1: आप कौन?
2: पापा कहाँ हैं?
1: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
2: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं, हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे, कभी उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
1: लेकिन आपको काम क्या है?
2: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
1: पापा ने कहा था?
2: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मदर को।
1: क्या हुआ अंकल?
2: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना, मेरे जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
1: अब मुझे क्यों डांट?
2: चुप कर।
1: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूं।
2: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूं मैं। क्यों कर रहा है तूने?
1: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं
2: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
1: लेकिन बुरी क्या लगी?
2: अंकल कल भी आखो एक मारूंगा।
1: बदतमीजी क्या करी
2: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ू?
1: कह रहा मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
2: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
1: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
2: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
1: क्या बोलू?
3: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
1: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
2: चुप कर, मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
7: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September.

0: विशाल मिश्रा एंड हंसिका परी की खूबसूरत सी आवाज, फिल्म का नाम सैयारा एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज फीचरिंग अनीत पड्डा एंड आहान पांडे। ये गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन इतना बता दूं इस अच्छे गाने के साथ वक्त जो है काफी कमाल हो चला है। मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 10:20।
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: Well, इतना बता दूं कि दिल से जो दुआ मांगी जाए वो कबूल ना हो, ऐसा कभी हुआ है क्या?
2: मिर्ची अंशु
0: वह जब दुनिया में बाकी सारी चीज़ों के लिए हम इतनी फीजिबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि सारी की सारी चीज़ें हैं जो हमारे फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। हमें खाना ऑर्डर करना है यार, फिंगर टिप पे सर्विस हो। हमें कोई प्रैक्टिकल काम करना है यार, फिंगर टिप पे हो जाए तो क्या ही बात है। तो भाई, जब दुनिया की सारी जिम्मेदारियाँ कुछ इस तरह से निभ रही हैं, तो एक बात बताऊँ, जिस उस पूरे मैं यूँ कहूँ आलम ने हमें ज़िंदगी में सब कुछ दिया है, जब उस तक पहुँचने की बात हो या उससे जुड़ी हुई कोई बात हो, तो दिल बस यही चाहता है कि क्यों ना उसके हर एक हाल की खबर या हमारा उस तक पहुँचने का वो रास्ता जो है ना, वो भी काफ़ी सहूलियत से हमारी ज़िंदगी में पहुँच ही जाए। बिल्कुल, इतना बता दूँ इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ एंडाउमेंट्स ने, कतर मिनिस्ट्री ऑफ एंडाउमेंट ने लॉन्च किया एक नया एप्लीकेशन जिसका नाम है मेशका ऐप। अब ये मेशका ऐप है क्या? चाहे आपको अपने घर के नज़दीक किसी मॉस्क के बारे में पता करना हो, आपको कुरान कॉम्पिटिशन्स जो कतर में होस्ट किए जा रहे हैं उनके बारे में जानना हो, हज या उमरा की सर्विसेज के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, या किसी भी तरह का कोई रिलीजियस गाइडेंस चाहिए हो, ऊपर वाले से ज़्यादा खुद को करीब पाने की कोशिश करना हो, तो ये एक ऐसा ऐप है जहाँ पे 50 से ज़्यादा डिजिटल सर्विसेज आपको एक जगह पर ज़रूर मिलेंगे। सो ऑल यू नीड टू डू इज़ टू फटाफट से अपने फ़ोन पे डाउनलोड करना है मेशका ऐप, MESHKA APP, लेकिन मेशका एप्लीकेशन का नाम है। बढ़िया है जी, जाइए ऊपर वाले की इबादत में, ज़रा खुद को पूरी शिद्दत के साथ डुबोइए, शामिल करिए। बस मेरी दिल से यही दुआ है, जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं ना वो ज़रूर पूरी हों, पूरी तरह से दिल से मुकम्मल हो। चलिए, विशाल डिडलानी की आवाज़, इन्हें अगला गाना आपके रास्ते, इन्जॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: शानन कविता कृष्णमूर्ति की खूबसूरत सी आवाज़ एंड बस तुमने बुलाया और हम चले आए। जिस लड़की को ढूंढने की आप कोशिश कर रहे थे वो लड़की ठीक यहाँ पर आपके साथ है।
1: मिर्ची अंशु
0: ये ना जब ये गाना मैं सुनी, इनफैक्ट जब ये गाना भी प्ले हो रहा था, इंस्टेंटली मेरे दिमाग में मेरे कोई ख्याल अगर आया, सो दैट वाज माय स्कूल टाइम। आपको याद है ये जब जिंदगी में पहली बार क्रश हुआ था, वो पहली बार इश्क प्यार मोहब्बत का एहसास हमारी ज़िंदगी में शामिल हुआ था, भाई उस समय ना इस पूरी की पूरी फीलिंग को महसूस करने का तरीका और ज़रिया जो है काफ़ी अलग हुआ करता था। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि हमें खुशी बस इस बात से हो जाती थी कि हमारे क्रश ने अपनी बाइसिकल को ठीक हमारी बाइसिकल के बाजू में पार्क किया हुआ है या खड़ा किया हुआ है। इनफैक्ट वो प्रेयर की जो क्यू होती थी, एक बार पलट के वो हमें देख ले, भाई दिन जो है ना वो बन गया। एंड साथ ही अगर क्लासरूम में नोटबुक्स या नोट्स एक्सचेंज हो गए तब तो समझो रिश्ता पक्का, रोका जो है हमने 101% डन मान लिया। एंड ऐसा कोई मौका अगर मिल जाए कि टीचर्स पनिशमेंट के चलते हमें आगे या पीछे बैठा दे, तब तो ये बात तय है कि शादी की डेट जो है वो फाइनल हो चुकी है, जिंदगी जो है बितानी और इसी के साथ बितानी है। क्या दिन थे यार, क्या मासूमियत के दिन। पता है उन दिनों की सबसे अच्छी बात यह है कि तब जो भी फीलिंग्स हमने अपनी ज़िंदगी में महसूस की है ना, कभी भी किसी के स्टेटस, किसी के लुक्स या अपीयरेंस को लेकर नहीं, बल्कि दिल से कोई अच्छा लगता था और हम उसके लिए ऐसा कुछ महसूस करते थे। चलिए मैं आपसे पूछने की कोशिश करती हूँ, स्कूल या कॉलेज टाइम में ऐसी कोई फीलिंग आपकी ज़िंदगी में कभी दस्तक दी? 5000 1896 वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल बॉम्बे वाइकिंग्स की आवाज़ एंड अगला प्यारा सा गाना एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: राखी सावंत, हाल ही में वर्ल्ड योगा डे गया है जहां हमने तरह तरह के लोगों को योगा करते हुए देखा है, आप उनके बारे में क्या सोचती हैं?
2: बहुत सारे लोग योगा जो है ना वो एसी में बैठ के करते हैं, कुछ लोग ओपन करते हैं। हमारा योगा हॉट योगा है, प्लीज आप राखी सावंत के साथ कॉम्पिटिशन कीजिए योगा में, मैं आपको पक्का हरा दूंगी।
1: ऐसी कोई चीज है ही नहीं राखी सावंत जिसमें हम आपसे जीत सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, शी इज हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
4: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
5: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
3: उसे सब पता है।
6: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
3: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, presented by iPay.
7: Laya iPay, best exchange rates. Bejo khushiyan aur paise dono hi ghar pe.
3: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Strawberry Choco Blizzard at Dairy Queen.
8: Happy, taste good. Papa John's, enjoy double delight offer.
3: Two small pizzas at 44, two medium pizzas 66 and two large pizzas at 99 riyals. Papa John's, better ingredients, better pizza.
9: Healthcare partner Kim's Health Medical Center, a multi-speciality medical center located in Al Wakra, Al Meshaf and Barwa City. Kim's Health. Because aap deserve karte hain best care.
3: Restaurant partner Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues. Refreshment partner Baladna Milk Laban Yogurt. Experience the fresh creamy taste that Qatar loves, refreshing every moment with every sip and spoon. Partnered by Homes R Us. Super sale 20 to 50% off across the store till 30th September 2026. Shop in store or online at homesrus.qa and Daiso Japan, your one-stop back-to-school shop. Printing and advertising partner Brand Arts. Print, signage and events, your trusted partner in creating impactful brands and unforgettable events.
6: Visual media partner Rehab Media.
3: Production partner Symphony.

0: Imagine Raghav Kaushik ki pyari si awaaz and what a lovely track it is from this lovely series Musafir Cafe. Agar ab tak na dekhi to ye dekhna jo hai na 101% banta hai.
1: Mirchi Anshu.
0: वैसे अगर देखने की बात करें तो देखना तो इन्हें भी बनता है यार. ह्यूमन माइंड जो है ना, ये बड़ा कमाल है. हम अक्सर ढेर सारी बातें सोचते हैं कि यार टेलीविजन स्क्रीन में ये जो प्रोग्राम देखा है, कभी लाइफ में लाइव देखने का मौका मिलेगा ना, हम इसे बिल्कुल ना छोड़ेंगे. न जाने ऐसे कितने कलाकार, कितने आर्टिस्ट होते हैं जिन्हें हम दूर से अडोर करते हैं. सब हमारा ये सपना, ख्वाब होता है कि यार एक बार इसके कॉन्सर्ट पे ज़रूर जाना है, एक बार इसे मिलने की कोशिश जो है ना वो ज़रूर करनी है. लेकिन फाइनली जब जिंदगी ये मौका दे, तब हमारे अंदर एक अलग कीड़ा दौड़ता है कि भाई जाना तो है, दिल भी बहुत है, लेकिन काश कहीं से टिकट जो है ना कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या, मतलब बाद में मुफ्त में से कुछ मिल सकता है क्या, कुछ डिस्काउंट हो सकता है क्या. बोले इतना ही कहना चाहूंगी, हर एक अच्छी चीज अगर मुफ्त में मिलने लगी तो बात ही क्या. और एक बात बताएं यार, अगर आपके सर्विसेज आपके काम के लिए कोई ये बोले कि भाई बस मुफ्त में आज काम कर दे, क्या आप कभी करना चाहेंगे? तो बस जब भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो बहुत सारी एंटिटीज एंड प्रॉपर्टीज उसके साथ इन्वॉल्व होती है, जिसमें ढेर सारे पैसे भी लगते हैं. तो जरा सा पैसा खर्चो एंड आप जो है अगले इवेंट में आने की तैयारी करो. वेल आई एम टॉकिंग अबाउट सुहानी शाह लाइव इन कतर, व्हिच इज स्केड्यूल्ड टू टेक प्लेस ऑन 25th ऑफ सितंबर एट कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर. अब तक टिकट्स अगर नहीं खरीदी तो जल्दी से जाएं, क्योंकि अर्ली बर्ड डिस्काउंट इससे पहले कि आपके हाथ से निकले एंड उसके बाद कोई फ्री टिकट्स या कोई ऑफर आप तक ना पहुंचे, इस टिकट को क्लेम करके आएं. प्लैटिनम लिस्ट की बात करें, क्यू टिकट्स की बात करें, स्नूनू सिटी की बात करें, हर जगह आपको टिकट्स इस वक्त मिल रही है. इनफैक्ट स्पेशल कैटेगरी 160 रियाल्स में 2 टिकट्स भी मिल रही है. जाइए, जाके टिकट्स जो है एंजॉय करके आइए, उसके बाद आपके मन को मंत्रमुग्ध कर देने की तैयारी सुहानी के साथ मिलकर हम जरूर करेंगे. अरे दुनिया की सबसे जानी मानी मेंटलिस्ट है और मैजिशियन भी. अगला गाना सचिन जिगर की कॉम्पोजिशन, राघव चैतन्या की आवाज. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: मेरी सास मुझे काम वाली की तरह ट्रीट करती है, पूरा दिन काम बताती रहती है, क्या करूं?
1: ऑलराइट, डू वन थिंग ना, तुम भी हफ्ते में दो छुट्टियां ले लिया करो यार, क्योंकि क्या है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का।

0: बलदीव नेगी की पावर पैक आवाज एंड व्हाट अ वंडरफुल रीप्राइज्ड वर्जन इट इज। भाई पलक मुच्छल का जो इसमें तड़का लगाया ना, ये गाना सुनने के बाद दिल जो है खुशी से गार्डन गार्डन हो गया। इवेंचुअली 90s के एरा में एक बार फिर से आपने और हमने डाइव इंजॉय कर लिया।
1: मिर्ची अंशु
0: राइट यू। एक बात बता दूं, जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा खुशी मुझे किसी बात ने दी है ना, अगर अपने बचपन के दिनों को याद करने की कोशिश करूं, 90s के एरा की बात करूं, तो भाई हर उस एक लोकल फूड ने जिसने मुझे खुद को अवेल कराया है जहां मैं चाहूं जब मैं चाहूं। एब्सोल्युटली, आपको याद है हमारे उस दौर में खाने पीने की क्या सहूलियत हुआ करती थी भैया। आज के बच्चों को तो अगर कुछ खाना है या कुछ पीना है एक जगह से दूसरी जगह जाना करता था, लेकिन आज की डेट में हम अगर अपने दिनों को याद करने की कोशिश करें तो किस तरह से आए दिन और हर एक से दो घंटे में कोई ना कोई ठेले वाले पोंगा लेकर हमारे घर के बाहर पहुंच जाते थे कि भैया ये ले लो, भैया वो ले लो, या तो फिर पोंगे की आवाज से हम समझ जाते थे कि हमारा ये अगला फेवरेट आइटम जो है हमारे घर के बाहर दस्तक दे ही चुका है। तो चलिए आज एक काम करते हैं, ऐसी किसी की कहानी मैं आपके बीच पेश करती हूँ, आपको सुनना है, इस पहेली को बुझाना है एंड फटाफट से मुझे ये बताना है कि ये डिश है तो आखिरकार है कौन सी। एंड अगर आपको भी लगता है ये आपकी उतनी ही फेवरेट है जितनी की मेरी, तो करेक्ट आंसर देंगे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर विच इज 5000186 5000186। वी विल गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम @mirchi1 कतरिया मिर्ची आंशु। सो हियर वी गो। गोल सी मेरी दुनिया, गोल सी मेरी दुनिया, अंदर राज हजार, एक ही बाइट में कर दूं टेस्ट का मैं धमाका यार, कभी खट्टा कभी मीठा कभी तीखा मेरी कहानी, अरे नाम बताओ मेरा जिसके लिए लाइन लगाए पूरी दुनिया सारी। वेल, गोल सी मेरी दुनिया, अंदर राज हजार, एक ही बाइट में कर दूं टेस्ट का मैं धमाका यार, कभी खट्टा कभी मीठा कभी तीखा है ये मेरी कहानी, अरे नाम तो बताओ मेरा जिसके लिए लाइन लगाए दुनिया सारी। 5000186 आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम @mirchi1 कतरिया मिर्ची अंशु। भाई फटाफट से रिप्लाई भेजो, अगला गाना जब तक मैं आप तक पहुंचाऊं। एंजॉय। बिंदी का नाम अंशु।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La
1: virpa la burka. Mirci, burka. Hello?
2: Hello? Hello?
1: भैया आवाज साफ नहीं आ रही, कम आ रही है आवाज।
2: साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
1: हाँ जी।
2: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
1: अच्छा अच्छा,
2: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दिए, ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
1: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
2: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप बंद कर इसको, बंद कर। रमेश इसे बंद कर दे यार। आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले।
1: मैं
2: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
1: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
2: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
1: तो ड्रिल मशीन हमारा लेके तो चोरी करने गया।
2: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
1: तू चोरी करने के लिए गया?
2: तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
1: यहाँ पे मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा है, मुझे फंसवाएगा।
2: बात सुन,
1: तू मुझे मरवाएगा, मुझे फोन कर दिया।
2: बात सुन।
1: हेलो
2: यार, कमाल है, आप तो मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
3: सर मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
1: कहाँ से बोल रहे भैया?
3: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
2: अब ठीक है।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: इट्स ऑल डाउन टू धोनी, इज़न्ट इट? फोर बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
7: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

0: खुशहाल और अरमान मलिका के गजब का फ्यूजन एंड ये प्यारा सा गाना, ये तो मैंने आप तक पहुंचा दिया। लेकिन अगर आशिकी की बात करें, सच कह रही हूँ, चुम्मा वाली आशिकी मेरी जिंदगी में ना बस इसी से।
1: मिर्ची अंशु
0: भाई, जितनी शिद्दत से मैंने इसका इंतजार किया, एक एक लाइन में लग कर बस इसे एक बार देखने की कोशिश की है ना, सच कह रही हूँ, इतनी ईमानदारी से, दिल से, शायद ही किसी और का इंतजार किया हो। किसकी दास्ता बयां कर रही हूँ? बस उसी फूड आइटम की, उसी खाने की चीज की, जिसकी पहेली आपको बुझाने के लिए अब से कुछ देर पहले मैंने कहा था, एक काम करते हैं, जितने भी लोग मेरे साथ अभी अभी जुड़े हैं, क्यों ना आपके लिए भी ये पहेली मैं एक बार फिर से सुना ही दूं। अभी भी अगर आपको लगे कि सुन के आपने पहचान लिया कि आइटम है तो कौन सा है, जल्दी से मुझे करेक्ट आंसर भेजना हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, विच इज 5000186। बाकी इसकी दास्ता मैं आप तक पहुंचाऊंगी। हाँ जी, गोल सी मेरी दुनिया, अंदर राज हजार, एक ही बाइट में कर दूं टेस्ट का मैं धमाका यार, कभी खट्टी कभी मीठी कभी तीखी मेरी कहानी, अरे नाम बताओ मेरा जिसके लिए लाइन लगाए ये दुनिया सारी। 5000186, ये कौन है आप मुझे बता रहे हो? तब तक लोग बाग ने क्या कहा है ये मैं आप तक पहुंचा दूं।
2: जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं तमजीद बात कर रहा हूं, और आपने ये गोलगप्पे की बात की है अभी, जो आपने ये पहेली में बोला है।
3: ये पहेली का जवाब गोलगप्पा है।
4: हेलो, गुड मॉर्निंग अंशु जी, इसे हमारे हैदराबाद में गच्चुप कहा जाता है और दूसरे स्टेट में शायद पानी पूरी।
0: वल आपने जो कहा ये पूरी तरह से सही, इसके साथ बहुत सारे लोगों ने लिखकर भी जवाब दिया, चाहे मैं बलेन श्री की बात करूं, मैं यूसुफ भाई की बात करूं, भाई साहब शर्मा थैंक यू सो मच, शाहीन थैंक यू सो मच, अब्दुल शकान, यार आप सब जो है ना बड़े कमाल के लोग हैं यार, रोज रोज जब आपके रिप्लाईज आते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उतना ही मुझे पानी पूरी यानी कि गुपचुप यानी कि पुचका खा के भी मजा आता है। भाई ये एक डिश में ना जाने कितने टेस्ट हमने महसूस कर लिए। याद है बचपन के दिनों जब घर के आगे वो भैया टन टन बजाते हुए ठेले के साथ गुजरा करते थे, हम जो बच्चे हैं, 1 रुपए की 4 पानी पूरी मिलती थी, तब लाइन लगा के उसे झुंड बना के क्या दिल खोल के खाया करते थे। इनफैक्ट स्कूल खत्म हो सबसे पहले कुछ काम करना है भाई, गुपचुप के ठेले में जाके धावा बोलना है, कॉलेज के बाद भी यही हमारा अभियान। इनफैक्ट ट्यूशंस के बीच में जब गैप मिले भाई क्या खाना है, चलना यार पानी पूरी खाने चलते हैं। क्या दिन थे यार। आज की डेट में जो प्लेट में सजी हुई वो फैंसी रेस्टोरेंट्स में पानी पूरी आती ना, मजा नहीं आता यार। मजे तो ठेले में खड़े होकर, साथ ही बारिश के पानी की 2-3 बूंदों को अपने गुपचुप में डालकर, असल मजा तो तब है यार। याद है वो दिन, बादशाह रजत सिंह की आवाज, यानी अगला प्यारा सा गाना एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।

क्या वो मोहब्बत जिसका हिसाब लग जाए, बोले वो तो लगे के रबाब बच जाए, लड़ मरेंगे लोग आग लग जाए, चेहरे से तेरे जो नकाब हट जाए।

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: विशाल शेखर की क्या गजब की कॉम्पोजिशन, डीप प्राग की आवाज, एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस ट्रैक। कहीं ना कहीं ये गाना जो है ना, मुझे ऐसा लगता है मेरी कहानी बयां कर रहा है। नहीं, सच कह रही हूँ।
1: मिर्ची अंशु।
0: वैसे अगर आसमान की बात करूं तो आज तो आप और हम आसमान में उड़ रहे हैं, एंड जरूर उड़ रहे हैं। अब क्या बताएं, कैसे बताएं, एक्सचेंज रेट से हमारी जिंदगी में खुशहाली जो लाई है तो उसके बाद तो ये आलम होना लाजमी है। हविंग सिद्धार, अगर आज ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियाल के अगेंस्ट, अगर इंडियन रुपीज की बात करूं तो मिलने वाले हैं 26.15। क्या बात है जी, पाकिस्तानी रुपीज 76.19। भैया आज तो घर पे शीर कोरमा वगैरह ऐसा कुछ बनाने की तैयारी करें। नेपाली रुपीज की बात करें 41.75। अगला जंप जो है यहाँ पे आपको और हमको देखने को जरूर मिला, बांग्लादेशी टका 33.83, एंड लंकन रुपीस जो है एक बार फिर से डंका बजाते हुए हम तक पहुंचे हैं विथ 89.96। तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां, लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स ऑल एंजॉय हबीबी। बंदी का नाम अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: Sony Razdan, Alia or Shaheen, in dono mein se, who's most likely to listen to you even today?
3: Difficult one. Why you split between my children?
4: So both of them in different ways.
5: Yeah.
4: But yeah, they are receptive generally. But I think I must be irritating them a lot because I give too much advice. That's what they tell me. So, kya bolu aapko?
2: Sony Razdan, aapne koi jawab nahi diya. आलिया या शाहीन किसी का नाम नहीं लिया. अगली बार जब आप आएंगे हम फिर से ये सवाल पूछेंगे. यू आर लिस्टिंग टू मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
6: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है.
9: शी कैन रीड योर माइंड. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snoo Noo. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: हाय हाय, सपने में तो कुड़ी मिलती है, लेकिन इस वक्त जो कुड़ी आप तक पहुंच रही है ना, ये हर किसी का सपना है।
1: अंशु, मिर्ची अंशु।
0: वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। एंड कोई तो कुड़ी है जिसके आ जाने से नींद चैन इस वक्त जो है ना सब कुछ उड़ने लगा है, उसकी दास्तान एंड कहानी जो है मैं आपके बीच जरा पेश कर ही दूँ। वैसे सच कहूँ यार, मेरी जिंदगी में अगर किसी कुड़ी की बात करूँ ना, तो वह है नींद। कुछ इस तरह से नींद ने कोहराम मचाया हुआ है भैया कि ये सिलसिला जो है सोने वाला कभी खत्म होता ही नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना किसी और सोने को अपनी जिंदगी में ना इस वक्त मैं दस्तक दे ही दूं, एंट्री दिलवा ही दूं। वेल, इस वक्त अगर गोल्ड रेट्स की बात करें तो आज क्या तहलका है। वेल, अगर पैम्प 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार की बात करें, सो इट इज प्राइस्ड एट 3604, 5 ग्राम 2843, 10 ग्राम 5616 कतरी रियाल्स, 1 ounce गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार 17363 कतरी रियाल्स, एंड पैम्प 10 तोला गोल्ड बार की बात करें, सो इट इज 64494। जाइए, सोने को चैन को अपनी जिंदगी में लेकर आइए। अरे सोने की चैन, बस उसी की बात कर रही हूँ। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।
1: Stay ahead of today's gold rates with Al Fardan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars
2: and earn Qatar Airways Avios today.
1: Visit our branches or download the app now.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: अरे कहीं शांति नहीं मिलती, घर जाऊं तो बीवी लड़ती रहती है, गार्डन जाऊं तो बच्चे चेंचे करते रहते हैं, मैं क्या करूं?
1: अरे तू एक काम करना, शमशान चला जा, उधर बहुत सारी शांति रहती है रे।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: बेटा तुम बस अच्छे से पढ़ाई कर लो, बाकी सारा काम जो है ना हम संभाल लेंगे।
1: मिर्ची अंशु
0: यार, बचपन के दिनों में हम सभी ने अपने माँ बाप से ये एक बात तो जरूर सुनी है कि तुम अच्छे से पढ़ लिख कर बस कुछ बन जाओ, बाकी सारी जिम्मेदारी जो है हम पूरी कर ही लेंगे। तो जहाँ पे एक तरफ यूनिफॉर्म्स रेडी हो चुके हैं, बुक्स रेडी हैं, लंच बॉक्स रेडी है, पेपर वर्क की बात करें तो पेरेंट्स ये काम भी आपके लिए हमने आसान कर ही दिया है। नहीं कहरमा ने, यानी कि कतर जनरल इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कॉर्पोरेशन ने। बोल इतना बता दूं कि एक डॉक्यूमेंट जो है एडमिशन्स के समय जरूर मांगा जाता है, टू होम इट मे कंसर्न, जो बेसिकली आपके इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अकाउंट की लोकेशन को कंफर्म करता है। तो अगर आपको लगे कि इस सर्टिफिकेट की जरूरत है तो कहरमा ने पेरेंट्स को रिमाइंड किया है कि अब इस सर्टिफिकेट के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इलेक्ट्रॉनिकली कहरमा की ऑफिशियल वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन से क्विकली, कन्वीनियंटली एंड परफेक्टली इस सीजन में इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़िया है जी, तो आपका काम जो है बच रहा है एंड वक्त भी बच रहा है, तो ये जो बचे हुए वक्त में ना अपनी दूसरी ड्यूटी निभाना शुरू कर देना। अरे बच्चों ने आज स्कूल में ढंग से पढ़ाई की या ना की तो आपकी फिर से पढ़ने की बारी आ गई, उनको पढ़ाने के लिए खुद चुप पढ़ना पड़ेगा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का राम अंशु, एंजॉय।

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana.
1: Rambala.
0: Burga, burga. La fiesta la burga.
1: Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: हेलो
3: हाँ
2: बोलो कौन
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ बोल कौन रहा है
3: बोल कौन रहे हो कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की नीचे से बोल रहा हूँ आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ
2: बोल कौन रहे हो
3: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ बोला था
3: ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
2: पूछ के घुसे थे क्या अंदर
3: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ
2: हाँ बोलो
3: ओए यार आपके टॉयलेट पे अभी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
2: कौन बोल रहा है कहाँ घुस गए यार
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ हाँ बोला था हुआ क्या है कुछ तो बताओ
3: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ ओए यार आपके टॉयलेट पे अभी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर
2: कब आया था कब घुसा अंदर
3: फिर सवाल यार मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके
2: तू कहाँ खड़ा है तो नहीं हो गया है
3: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में बाहर निकालो यार
2: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने
3: ऑफिस क्यों गए सीवर साफ करवाना था मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर
2: मेरी सीवर में घुसा है किसी और के सीवर में घुस गया
3: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार
2: सीवर में मरा रहा है तू
3: गाली तो मत दो
2: हेलो
3: हेलो
2: फिर फोन कर दिया तूने
3: अच्छा सीवर साफ होने का काम करो एक चीज बोलो
2: क्या बोलो
3: कुकड़ुकू
4: सर आई एम सो सॉरी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका पर क्या
2: कुकड़ुकू
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: ड्रिवन बाय शैकमैन ट्रक्स जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर शैकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स पावर दैट सेव्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप घर बैठे चाहिए नया कार्ड स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू iPhone 17 Pro Max लेट मत करो ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे TNC अप्लाई
7: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इजंट इट 4 बॉल्स लेफ्ट दे नीड 12 रन्स टू विन
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला लेकिन उसे पता है
8: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC and to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snono. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live

0: यार इस वक्त ना मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कहना चाहती हूँ।
1: मिर्ची अंशु
0: देखो माना कि ये जरूरी है, लेकिन एक दूसरी बात और भी ज्यादा जरूरी है। मुझे ना इस वक्त अगर कोई दिन याद आते हैं तो वो है मेरे बचपन के, अपने स्कूल के दिन। क्या कमाल के दिन थे यार। स्कूल में पढ़ाई भी की, डांट भी खाए, लेकिन उससे ज्यादा मस्ती की, मजे किए। स्कूल से घर आते थे, मम्मी की डांट खाते थे, एंड सीधा अगर कहीं भागना है तो ट्यूशन, ट्यूशन में पढ़ाई, फन, मस्ती, सब कुछ। लेकिन लौट के आने के बाद मजाल कोई कह सके कि फिर से पढ़ने बैठो? भाई बैग एक कोने में रखा एंड सीधा कहीं गए तो अपने दोस्तों की पलटन के साथ, एंड उसके बाद घर की तरफ लौट कर तभी आना है जब पापा की बैट जो है ना हमें बुलाने आ जाए। क्या दिन थे यार। जब आज की जनरेशन इन बच्चों को देखती हूँ तो लगता है जमाना एंड दौर कितना कंपेरेटिव हो चुका है, कितना लोड है यार। पढ़ना भी है, ये एक्टिविटी भी करना है, ये भी सीखना है, AI एंड व्हाट नॉट। देखो माना कि दौर जो है बदल गया है, लेकिन बचपन और बचपना वो तो हर एक शख्स की जिंदगी में एक ही बार आता है ना यार। जितने भी पेरेंट्स इस वक्त मेरे साथ कनेक्टेड है ना, एक ही बात कहना चाहूंगी कि बच्चों की जिंदगी को उनके करियर के चलते संवारना है, लेकिन इस पूरे के पूरे प्रोसेस में ये बात नहीं भूलना है यार कि कहीं उनका बचपना ना खो जाए। उन्हें खेलने दीजिए, अपने बचपन के दिनों को दिल से जीने दीजिए, जैसे हमने जिया है। अपनी मंजिल तक पहुंच गए ना तो पढ़ाना लिखाना जरूरी है, लेकिन बचपन को बचपन रहने देना और भी ज्यादा जरूरी है। सोचिएगा जरूर। बंदी का नाम अंशु।

0: अरे इतना तो एलवी की बैग लेते वक्त नहीं सोचा, आप क्या सोच रहे हो?
1: मिर्ची अंशु
0: यार, हम और हमारी मेंटालिटी जो है ना, ये बड़ी कमाल है। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाकर हम कभी डिस्काउंट की उम्मीद नहीं करते, क्योंकि बार्गेन वहाँ होता नहीं है ना। लेकिन हाँ, वो सब्जी मंडी में जाकर जब तक 10 रियाल की चीज को 8 रियाल में ना लाए ना, तब तक खाना हजम हो तो कैसे हो, है ना। बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में जाने के लिए, अवार्ड शोज में जाने के लिए हमारे पास बटुए में पूरे पैसे हैं, लेकिन भैया पता चल जाए हमारे देश में अगर कुछ हो रहा है तो कहीं से कुछ तो डिस्काउंट मिले, नहीं तो मुफ्त में टिकट मिल जाए। जिसके पास जितने ज्यादा पैसे, आज की डेट में सबसे ज्यादा फ्री में टिकट वही मांगता है गुरु। नहीं, हमारा तो बस यही एक्सपीरियंस है। यार, अगर हर एक जिंदगी के अच्छे एक्सपीरियंसेस फ्री में मिलने लगे तो उन चीजों की वैल्यू हो तो कैसे हो। तो इतना ही कहना चाहूंगी, अगर दिल से किसी इवेंट को अटेंड करने का मन है, जाना चाहते हैं, तो क्यों ना यार, जैसे बाकी चीजों में खर्च करते हैं, यहाँ पर भी आगे आए, बढ़कर टिकट लें। वेल, सुहानी शाह लाइव इन कतर, एक ऐसी मेंटलिस्ट जिसे देखने के लिए न जाने दुनिया में कितने लोग बेकरार हैं। भैया वो कतर आ रही है 25th of September को एट कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर। इतना ही कहना चाहूंगी, ऐसे मैजिकल इवेंट्स का एक्सपीरियंस बार बार नहीं मिलता, तो जब मिल रहा है तो क्यों ना आप और हम मिलकर इस इवेंट का हिस्सा बने एंड दिल से एंजॉय करें। क्यू टिकट्स प्लैटिनम लिस्ट स्नूनू सिटी, हर जगह पर टिकट्स इस वक्त अवेलेबल हैं। कुछ अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, इसके बाद कोई ऑफर नहीं आने वाला, कोई फ्री टिकट नहीं मिलने वाली। जाइए अपनी टिकट्स को रिजर्व करके आइए, बाकी आप और हम मिलकर मंत्रमुग्ध होंगे फिर 25th of September को। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: यार हम तो बस यही चाहेंगे कि यूं ही हंसते हंसाते नाचते गाते जिंदगी का हर एक दिन जो है अच्छी तरह से गुजरता रहे।
1: मिर्ची अंशु
0: यार बचपन में सिखाई गई एक ये जो बात है ना, इसे मैंने हमेशा के लिए गांठ बांध दी है कि हर एक दिन को ऐसे जीना है कि शायद ये हमारा आखिरी है। ना ऐसा होगा नहीं यार, आपकी और हमारी ज़िंदगी जो है ना काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छी तरह से आगे बढ़ती ही जानी है। लेकिन ये है कि लाइफ ना हर दिन ये मौका देती है कि हम फिर से जी सकें। इंसान मरता बस एक बार। तो इतना ही कहना चाहूँगी यार जाने से पहले कि जो भी काम करें इंश्योर करें कि आप उस प्रोसेस को एंजॉय करें, क्योंकि बात इतनी है ना, काम तो एनी हाउ करना ही है, चाहे पसंद हो या ना हो। तो चाहे जो भी है क्यों ना उसमें अपनी खुशी कहीं ना कहीं हम ढूंढने की कोशिश करें। इवेंचुअली ये जो है ना आपके हमारी जिंदगी का हिस्सा यानी कि पार्ट बन जाना है। वेल एक ही बात जानती हूँ, जब रात में सोऊं तो सुकून वाली नींद जो है ना हर रोज आए और चैन से आए। अगर ये आपके साथ बिल्कुल हो रहा है तो समझ जाओ हर एक दिन को आप सिर्फ बिता नहीं रहे हो, खुशी से अच्छी तरह से गुजार रहे हो। तो बस आज ये काम जरूर करना, लेकिन उसके पहले जरा आपकी और हमारी पेट पूजा का इंतजाम हो जाए। भैया मेरा प्लान तो बड़ा पक्का है, आज जो है अपनी टीम के साथ मैं बाहर जा रही हूँ, आपका लंच का क्या सीन? 5000 1896 वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु, मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची 89.6 मिर्ची वन। इट्स हॉट। मासलामा हबीबी।

0: ओपिनियन हो तो दिक्कत, ना हो तो दिक्कत।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: नहीं, हमारे यहाँ आजकल ओपिनियंस को लेकर ना काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज हो जाती हैं। मतलब अगर किसी भी चीज को लेकर आप एक स्टैंड लेते हैं तो आपको उस पे बुली करने लगते हैं लोग। नहीं, मैं भारी भरकम एग्जांपल कोट नहीं करने वाली हूँ। मैं ना अभी कुछ दिनों पहले जो यश की फिल्म आई टॉक्सिक, उसकी ही बात कर लेती हूँ। सो इस मूवी को लेकर देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल फाउंड ऑन इंटरनेट राइट नाउ। एक जो पसंद कर रहे हैं मूवी को और दूसरे जो नापसंद कर रहे हैं। और भाई, इन दोनों ही ओपिनियंस वाले लोगों को बुली किया जा रहा है कि ओह कितने पैसे मिले नेगेटिव या पॉजिटिव पीआर के लिए, बताओ बताओ। क्यों भाई, एक इंसान आज की डेट में जो चीज फील करता है उसको खरे खरे बोल नहीं सकता। और बस इसी जिद पे मैं फिर से बोलना चाहती हूँ कि इस फिल्म की कहानी तबाही, एक्टिंग तबाही, डायरेक्शन तबाही, और इसी के साथ मेरे पैसों की भी तबाही। देखो, मूवी का नाम टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स है, जो आपको अपने इस फिल्म को देखने के ग्रोनअप डिसीजन पे सवाल खड़ा करने पे मजबूर कर देगी। 3 घंटे 15 मिनट की मूवी है, लेकिन 3 घंटे तक आप कहानी ही ढूंढते रहते हैं जिसको क्लोजर मिलता है लास्ट के 15 मिनट में। एंड स्टैट्यूटरी वार्निंग, अगर आपको वर्टिगो की प्रॉब्लम है ना, तो प्लीज थिएटर में टॉक्सिक अवॉइड करें, क्योंकि यश और कियारा के ओह सो इंटीमेट एक्शन के अलावा फिल्म में कैमरा कभी स्टेबल ही नहीं होता है। इन शॉर्ट, जिंदगी में डिसअपॉइंटमेंट के डोज को बढ़ाना चाहते हो तो प्लीज थिएटर जाके ये फिल्म जरूर देखना, वरना तो जैसे बच्चे को गुब्बारा काफी, वैसे समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Energy. Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga. Energy, burga.
1: Hello.
2: Good evening, Mr. Srivastav. I'm Modern School se bol raha hu, aapke bete ke school se. How are you?
1: Thank you.
2: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है।
1: I know, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा। हाँ,
2: नहीं वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे। यू नो
1: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
2: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो। आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे।
1: मतलब गेम है क्या ये?
2: आओ मिलो शिलो शालो,
1: मतलब पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
2: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है। आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए। राइट, देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह। आओ मिलो,
1: आओ मिलो,
2: चिलो शालो,
1: चिलो शालो,
2: कच्चा धागा,
1: कच्चा धागा,
2: रेस लगा लो,
1: रेस लगा लो,
2: दस पत्ते तोड़े,
1: दस पत्ते तोड़े,
2: एक पत्ता कच्चा,
1: एक पत्ता कच्चा।
2: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज से बोलेंगे, दस पत्ते तोड़े,
1: तोड़े,
2: या मिस्टर श्रीवास्तव दस पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
1: दस दस दस पत्ते तोड़े,
2: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा,
1: ओके ओके सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा,
2: घोड़ा दौड़ा टुकड़ू दू,
1: घोड़ा दौड़ा टुकड़ू दू,
2: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को,
1: मिस्टर
2: श्रीवास्तव बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
1: यार ये कुछ
2: नहीं, सर ये सर ये सब सुन चुके हैं, अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
4: इट्स ऑल डाउन एंड डन इज़न्ट इट, फोर बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
6: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नूनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। आश्रम सीजन 4 में नया एडिशन हुआ है बाबू मोशाय। सो एज वी ऑल नो, मच लव्ड सीरीज आश्रम, जिसमें हमारे लॉर्ड बॉबी अल्टीमेट लेवल का कैरेक्टर निभाते नजर आते हैं हर बार, ऑफकोर्स गुरु जी का। बट वहां से आगे बढ़ते हुए उस स्टारकास्ट की फेहरिस्त में अब एक और नाम जुड़ चुका है, एंड दैट इज अक्षय ओबेरॉय। सो प्रकाश झा की मच लव्ड इस सीरीज का इंतजार तो हम सबको बेसब्री से है, बाकी की रीड्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। द V1 का टीजर आउट है, एंड भाई अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज गो वॉच इट, क्योंकि एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया एक नेवर सीन बिफोर अवतार में नजर आएंगे, क्योंकि वो आपको साथ लेकर जाएंगे एक फैंटेसी फोकलोर स्पेक्टिकल में, जहां एक फॉरबिडन फॉरेस्ट है और वहां के रूल्स काफी चिलिंग है कि भाई सूर्यास्त के बाद V1 में प्रवेश करना वर्जित है। फिल्म थिएटर्स में 25th ऑफ सितंबर को रिलीज होगी, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन इज वेल। ईद 2027 रिलीज कंफर्म हो चुकी है सलमान खान और नयन तारा स्टारर अपकमिंग वामशी पेदीपल्ली डायरेक्टोरियल फिल्म मॉन्स्टर की, जिसके स्टारकास्ट को अब सीमा बिस्वास और रोनित रॉय ने भी ज्वाइन कर लिया है। नॉट टू मेंशन, इस मूवी में सलमान और नयन तारा के अलावा अरविंद स्वामी, जैकी श्रॉफ, अभिमन्यु सिंह और राहुल देव भी नजर आएंगे। बाकी अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: जिंदगी के गेम्स को जरा साइडलाइन कीजिए और आइए जरा फिल्म ची गेम खेलते हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप एंड यस इट्स टाइम। जो लोग मुझे रोज सुनते हैं उनको पता है कि अब मैं एक गेम खेलूंगी, बॉलीवुड सेंट्रिक गेम होगा ये स्पेसिफिकली, जहां मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ टू स्लाइड इन टू माई इंस्टाग्राम DMs और वहां पे अपना नंबर भेजिए ताकि मैं आपको कॉल करके ये गेम खेल सकूं। तो अभी मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे है रजनी मैम, जिनसे मेरा पहला सवाल है कि भाई वो कौन सा हीरो है जिसकी फिल्म ने अभी इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 1,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है?
3: रणवीर सिंह
0: की फर्स्ट को-स्टार का नाम क्या है?
3: फर्स्ट को-स्टार अनुष्का शर्मा।
0: अनुष्का शर्मा की फर्स्ट मूवी के को-स्टार कौन थे?
3: शाहरुख खान
0: ने किस फिल्म में, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है, सेन्योरिटा वाला डायलॉग मारा
3: है? DDLJ।
0: क्या बात है, DDLJ में काजोल के पापा का रोल किसने किया है?
3: अमरीश पुरी
0: किस मूवी में बोलते हैं कि डैश खुश हुआ?
3: ये मिस्टर इंडिया।
0: और डायलॉग कौन सा है?
3: मोगन बहुत खुश हुआ।
0: क्या बात है, और मिस्टर इंडिया के लीड एक्टर कौन थे?
3: अनिल कपूर
0: की बेटी का नाम क्या है?
3: सोनम कपूर
0: की पहली फिल्म कौन सी थी?
3: खूबसूरत नहीं, खूबसूरत नहीं, ये वैसे दिल्ली 6 तो नहीं थी?
0: नहीं, दिल्ली 6 भी नहीं थी, बट जो अच्छा गेम खेला है आपने उसके लिए आपको ये टैग तो देना बनता है यार।
1: मिर्ची फिल्म ची।
0: बाकी अगर आप भी बनना चाहते हैं मिर्ची फिल्मची तो फड़ाक द चड़ाक मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिर्ची श्रुति पे जाके DM कीजिए अपना फोन नंबर एंड आई विल गिव यू अ कॉल। बाकी यहां से ही कंटिन्यू होगा आगे का गेम। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, मैं हूं आपके साथ श्रुति, इट्स हॉट।

0: लाइफ के बोरिंग गेम्स को साइडलाइन करके जरा फिल्मी गेम खेलने की कोशिश करो।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: और आपकी इस कोशिश में मैं आपका साथ दूंगी ना। मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप, एंड यस यू हर्ड इट राइट, इट्स टाइम फॉर मिर्ची फिल्म जी, जहां मैं आपको कॉल करती हूँ टू प्ले दिस बॉलीवुड सेंट्रिक गेम। ऑलरेडी मैंने रजनी मैम को कॉल किया था, बट वो अटक गई ऑन द पॉइंट कि भाई सोनम कपूर की पहली फिल्म का नाम क्या था। अब इसके आगे जो गेम खेल रही है हमारे साथ उनका नाम है उमा। तो उमा मैम, सोनम कपूर की पहली फिल्म का नाम क्या था?
3: सावरिया।
0: सावरिया में उनके कोस्टार कौन थे?
3: रणबीर कपूर।
0: रणबीर कपूर ने इलियाना डिक्रूज और प्रियंका चोपड़ा के साथ कौन सी फिल्म की थी?
3: बर्फी।
0: एक और फिल्म बताइए जिसमें ये बर्फी शब्द है उसके नाम में।
3: बरेली की बर्फी।
0: बरेली की बर्फी की लीड एक्टर कौन है?
3: कृति सैनन।
0: कृति सैनन की अपकमिंग फिल्म का नाम?
3: नहीं।
0: कोई बात नहीं, चलिए हम बता देते हैं, इसका नाम है कॉकटेल 2, जिसमें वो शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना के साथ नजर आने वाली हैं। बड़ूमा मैम ने जो अच्छा गेम खेला है उसके लिए उनको ये टैग देना तो बनता है ना यार।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: अब देखो, आज के मिर्ची फिल्मची तो ढूंढ लिए हैं मैंने, बट कल एक बार फिर से हाजिर होंगी आपके सामने विद द सेम गेम। सो डोंट फॉरगेट टू स्लाइड इनटू माय डीएम्स एंड सेंड योर नंबर माय फ्रेंड। मिर्ची श्रुति के नाम से मैं वहां मिलूंगी आपको। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
1: Delhi Belly, Jalsa, Brown जैसे content के creator. मिस्टर अभिनय देओ
2: मोस्ट लाइकली टू रिमूव बाल की खाल मतलब तह तक जवाब वो बताओ
3: वेट
2: टेल
3: आई हैव अ लिस्ट भयंकर समय लग जाएगा तो उसके अंदर ना घुसे तो ही बेटर है बट मेरे सब लोग आजू बाजू में वही हैं सब बाल की खाल निकालने वाले ही है कंटिन्यू व्हाट आई मीन ही इज पास्ड अवे बट माय फादर माय गॉड एनीथिंग दैट आई डू एनीथिंग दैट एनी स्क्रिप्ट हैज बट ऐसा क्यों अरे भाई साहब फिल्म है इमेजिन नो बट व्हाई एंड ही वाज अ फिल्ममेकर एंड एक्टर हिमसेल्फ
1: अभिनय देओ द डायरेक्टर इज टॉकिंग अबाउट हिज फादर रमेश देओ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स द हिंदी एंड द मराठी सिनेमा हैज सीन आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
0: बॉलीवुड बोल्डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
5: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट
6: कैसे किया सीरियसली कैसे किया ये
4: उसे सब पता है
7: शी कैन रीड योर माइंड शी विल ब्लो योर माइंड She is coming for the very first time.
4: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC and to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snow. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: एक्टिंग इतनी कमाल कि मेन लीड से ज्यादा फुटेज इनको मिला।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हेलो जी, हाय बाबू मोशाय। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से हमें बहुत सारी ऐसी फिल्में मिली हैं जिसमें अलग अलग किरदार नजर आते हैं, कुछ मेन लीड्स होते हैं और कुछ साइड कैरेक्टर्स होते हैं। लेकिन आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे पांच फिल्मों को डिस्कस करूंगी जिनके साइड कैरेक्टर्स ने हमारे दिल में मेन लीड से ज्यादा जगह बना ली अपने परफॉर्मेंस के दम पे। तो चलिए लिस्ट की शुरुआत करते हैं। नंबर वन पे लेट्स टॉक अबाउट हेरा फेरी से बाबूराव गणपतराव आपटे। भाई साहब, ये बाबूराव का स्टाइल है, उठा रे बाबा मेरे को नहीं इन दोनों को उठा ले। ये सारे डायलॉग्स आज भी हर दूसरे इंसान के दिमाग में फिट हैं और हम ऑन अ डेली बेसिस भी अपने सिचुएशंस में इन डायलॉग्स को यूज कर लेते हैं। एंड दैट माई फ्रेंड इज द पावर ऑफ दिस एक्टर, बोले तो परेश रावल, जिन्होंने इस फिल्म में कॉमन मैन के स्ट्रगल्स को बहुत अल्टीमेट तरीके से दिखाया है। उनका अनफिल्टर्ड फ्रस्ट्रेशन हो, लेजेंडरी कॉमिक टाइमिंग हो, या फिर हर बार उनका रॉन्ग नंबर के चलते परेशान होकर सामने वाले को गालियां सुनाना हो। कसम से मेरे हिसाब से तो बाबूराव गणपतराव आपटे के ऊपर एक अलग फिल्म बननी चाहिए, मजे नहीं आएंगे उनकी बैक स्टोरी जानने में। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ और अब से कुछ ही देर में ऐसे ही और चार कैरेक्टर्स की बातें वापस लेकर आऊंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, buscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
1: हेलो
2: हेलो बेटा नवनीत,
1: आप कौन?
2: पापा कहाँ हैं?
1: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
2: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
1: लेकिन आपको काम क्या है?
2: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
1: पापा ने कहा था?
2: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मदर को।
1: क्या हुआ अंकल?
2: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
1: अब मुझे क्यों डांट?
2: चुप कर।
1: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूं।
2: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूं मैं। क्यों कर रहा था तूने?
1: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं,
2: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है? असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
1: लेकिन बुरी क्या लगी?
2: अंकल कल एक मारूंगा।
1: बदतमीजी क्या करी थी?
2: ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
1: कह रहा हूँ मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
2: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
1: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
2: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
1: क्या बोलूं?
3: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
1: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
2: चुप कर, मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
7: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms.
7: Driven by Suzuki Qatar. Back to school, back to office. Go with Suzuki. Choose from a range of safe, fuel-efficient and reliable cars. Time-tested in Qatar for over 50 years.
6: Visit Suzuki Qatar Showroom by Tehsil Motors, Airport Road, Doha. Presented by Galagna Milk, Lavan Yogurt. Experience the fresh, creamy taste that Qatar loves. Refreshing every moment with every sip and spoon. Powered by iPay.

0: इनकी परफॉर्मेंस से मेन कैरेक्टर को भी सेल्फ डाउट हो जाता है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: बाबू मोशाय, मैं उन साइड कैरेक्टर्स की बात कर रही हूँ जिनके बिना एक फिल्म अधूरी है, और इनकी परफॉर्मेंसेज इस लेवल की रही है कि भैया ऑडियंस ने मेन कैरेक्टर को भी उतना प्यार ना दिया हो इन द फिल्म जितना इन साइड कैरेक्टर्स को मिल गया। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे ही पांच कैरेक्टर्स को डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले हमने हेरा फेरी से बाबू राव गणपत राव आपते को डिस्कस किया। अब नंबर दो पे फिल्म वेलकम से उदय शेट्टी और मजनू भाई को कैसे भूल सकते हैं यार। मतलब एक तो इन दोनों का परफेक्ट मिक्स, स्कैरी गैंगस्टर और फ्रस्ट्रेटेड आर्टिस्ट, और इनका जो ब्रोमांस है ना वो अलग लेवल, लेजेंडरी। वो नाना पाटेकर बोले तो उदय शेट्टी का कंट्रोल उदय कंट्रोल हो, या फिर हमारे मजनू भाई का घोड़े पे गधे वाली पेंटिंग हो। चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और अब नंबर तीन पे बात करते हैं फिल्म भूल भुलैया से छोटा पंडित की भाई साहब प्लेड बाय राजपाल यादव। ये कैरेक्टर जो है ना इसने अपना एक कल्ट बना रखा है। अब उनका पानी का नाम सुन के एकदम जोर से छलांग मारना हो या फिर अपने आप को पूरे तरीके से लाल रंग में रंग के, कान पे अगरबत्ती लेके लोगों के बीच इधर उधर घूमना हो, इन शॉर्ट छोटे लाल का कैरेक्टर वॉज समथिंग जिसके बिना भूल भुलैया फ्रेंचाइजी इज इनकम्प्लीट। वेल, मेरी इस लिस्ट में और भी दो ऐसे ही कैरेक्टर्स की बातें बाकी हैं, बट इन अ वाइल तब तक आप भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं और सोचें कि ऐसे कोई कैरेक्टर्स आपको भी पसंद आए हैं कभी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
3: जब से तेरे ने

0: साइड एक्टर्स में मेन कैरेक्टर एनर्जी।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: वेल बाबू मोशा, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से हर फ्राइडे हमें कोई ना कोई फिल्म जरूर मिलती है, और हर फिल्म में मेन कैरेक्टर्स तो होते हैं लेकिन उनकी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए साइड कैरेक्टर्स भी होते हैं। एंड आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे साइड एक्टर्स की डिस्कशन कर रही हूँ जिन्होंने मेन लीड से ज्यादा स्पेस हमारे दिल में बना ली है। और लिस्ट में सबसे पहले हमने हेरा फेरी से बाबूराव गणपतराव आते की बात की। नंबर दो पे वेलकम के उदय शेट्टी एंड मंजनू भाई। नंबर तीन पे भूल भुलैया से छोटा पंडित। और अब बारी है नंबर चार पे टू टॉक अबाउट मुन्ना भाई MBBS से सर्किट। भाई ने बोला करने का मतलब करने का। जिस तरीके से अरशद वारसी ने सर्किट के कैरेक्टर के जरिए एक सच्चा दोस्त अपने आप को प्रूव किया है ऑफ मुन्ना भाई, बोले तो संजय दत्त का किरदार ऑफ कोर्स इज रियली कमेंडेबल। एंड उनको देखने के बाद इन द मूवी हर दूसरा इंसान कहीं ना कहीं यही सोच रहा था कि भाई अपने जीवन में भी एक सर्किट तो मांगता है। चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हुए लास्टली बात करते हैं फिल्म ऑल द बेस्ट से RGV की, बोले तो रघुनंदन दास गोवर्धन दास वाकावले। ढोंढू जस्ट चिल, ये डायलॉग हर दूसरे इंसान के जुबान पे जरूर है। मतलब ये पूरी दुनिया जो है वो हाई ऑन स्ट्रेस है, लेकिन जिस तरीके से उनकी फिलॉसफी है ढोंढू जस्ट चिल, इट जस्ट रेजोनेट्स विद द एंटायर जनरेशन। तो बताइए मेरी इस लिस्ट में आप भी कुछ ऐसे ही साइड कैरेक्टर्स का नाम ऐड करना चाहेंगे? देन फील फ्री टू डू दैट। 9930983983 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। आश्रम सीजन 4 में नया एडिशन हुआ है बाबू मोशाय। सो एज वी ऑल नो, मच लव्ड सीरीज आश्रम, जिसमें हमारे लॉर्ड बॉबी अल्टीमेट लेवल का कैरेक्टर निभाते नजर आते हैं हर बार, ऑफकोर्स गुरु जी का। बट वहां से आगे बढ़ते हुए उस स्टारकास्ट की फेहरिस्त में अब एक और नाम जुड़ चुका है, एंड दैट इज अक्षय ओबेरॉय। सो प्रकाश झा की मच लव्ड इस सीरीज का इंतजार तो हम सबको बेसब्री से है, बाकी की रीड्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। द V1 का टीजर आउट है, एंड भाई अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज गो वॉच इट, क्योंकि एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया एक नेवर सीन बिफोर अवतार में नजर आएंगे, क्योंकि वो आपको साथ लेकर जाएंगे एक फैंटेसी फोकलोर स्पेक्टिकल में, जहां एक फॉरबिडन फॉरेस्ट है और वहां के रूल्स काफी चिलिंग है कि भाई सूर्यास्त के बाद V1 में प्रवेश करना वर्जित है। फिल्म थिएटर्स में 25th ऑफ सितंबर को रिलीज होगी, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन इज वेल। ईद 2027 रिलीज कंफर्म हो चुकी है सलमान खान और नयन तारा स्टारर अपकमिंग वामशी पेद्दीपल्ली डायरेक्टोरियल फिल्म मॉन्स्टर की, जिसके स्टारकास्ट को अब सीमा बिस्वास और रोनित रॉय ने भी ज्वाइन कर लिया है। नॉट टू मेंशन, इस मूवी में सलमान और नयन तारा के अलावा अरविंद स्वामी, जैकी श्रॉफ, अभिमन्यु सिंह और राहुल देव भी नजर आएंगे। बाकी अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: राखी सावंत हाल ही में वर्ल्ड योगा डे गया है, जहां हमने तरह तरह के लोगों को योगा करते हुए देखा है। आप उनके बारे में क्या सोचती हैं?
2: बहुत सारे लोग योगा जो है ना वो एसी में बैठ के करते हैं, कुछ लोग ओपन करते हैं। हमारा योगा हॉट योगा है। प्लीज आप राखी सावंत के साथ कॉम्पिटिशन कीजिए योगा में, मैं आपको पक्का हरा दूंगी।
1: ऐसी कोई चीज है ही नहीं राखी सावंत जिसमें हम आपसे जीत सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, शी इज हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
4: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
5: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
3: उसे सब पता है।
6: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
3: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar. This 25th.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी। बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: मैं रोज सुबह योगा क्लास में जाता हूँ और योगा करते करते गैस निकल जाती है, मैं क्या करूँ?
1: गैस निकल जाती है हु? तो घर से निकले तो पहले ही नॉब चेक करके जाया कर।

सिंगर की वजह से इस फिल्म के कंपोजर की नौकरी बची थी। फिल्म काला पत्थर जो 1979 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था यश चोपड़ा साहब ने, जिसमें बिग बी बोले तो अमिताभ बच्चन सर, शशि कपूर सर, नीतू सिंह मैम, राखी गुलजार मैम, शत्रुघ्न सिन्हा और परवीन बाबी जैसे अमेजिंग स्टार्स थे। सो जब फिल्म बन रही थी तो अचानक से मेकर्स को इसका म्यूजिक समझ नहीं आ रहा था एंड एज अ रिजल्ट वो चाहते थे कि कंपोजर राजेश रोशन जो इस फिल्म पे काम कर रहे थे उनको रिप्लेस किया जाए। बट देन केम लता मंगेशकर मैम इन टू द पिक्चर, शी स्टेप्ड इन और उन्होंने कहा कि भाई देख लो, अगर राजेश रोशन को आप हटाओगे तो मैं इस फिल्म में क्या आगे आपकी किसी भी फिल्म में कोई भी गाना नहीं गाऊंगी। एंड रेस्ट बाबू मोशाय इज हिस्ट्री। राजेश रोशन ने इस फिल्म के म्यूजिक पे काम भी किया और फिल्म काला पत्थर का एल्बम लोगों को अल्टीमेट लेवल पे पसंद भी आया। तभी मैं कहती हूँ बड़े पर्दे पे जो कहानी आप देखते हैं उसके पीछे बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां भी होती हैं जो ढूंढकर मैं आप तक लेकर आती हूँ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ और आप अपनी फेवरेट फिल्म का नाम मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिर्ची श्रुति पे कनेक्ट करके भेज सकते हैं ताकि मैं उसका होमवर्क भी आपके लिए करके आऊँ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स ऑल।

हूँ मिर्ची पे, मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और आप अपनी फेवरेट फिल्म का नाम मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिर्ची श्रुति पे कनेक्ट करके भेज सकते हैं, ताकि मैं उसका होमवर्क भी आपके लिए करके आऊँ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbala. Burga, burga. Ne vin pa la burga.
2: Mirci, burga.
3: Hello?
4: Hello? Hello?
3: भैया आवाज साफ नहीं आ रही, कम आ रही है आवाज।
4: भाई साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
3: हाँ जी।
4: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
3: अच्छा अच्छा।
4: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दी है, ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
3: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
4: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर रमेश, इसे बंद कर दे यार। आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले।
3: मैं
4: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
3: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
4: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
3: तो ड्रिल मशीन हमारा लेके तो चोरी करने गया।
4: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
3: चोरी करने के लिए

0: तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
1: यहाँ पे कौन चोरी कर रहा है? मुझे फंसवाएगा बहन,
0: मेरी बात सुन।
1: अरे माँ का तू मुझे मरवाएगा बहुत, कल तुझे मुझे फोन कर दिया बहन,
0: मेरी बात सुन।
1: हेलो
2: यार कमाल है, आप तो मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
3: सर सर सर सर मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
1: कहाँ से बोल रहे भैया?
3: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
0: अब ठीक है।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot.
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
7: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snow. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: मजाक और पर्सनल अटैक में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है?
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं।
0: मिर्ची पे ट्यून इन हूं आप, मैं हूं आपके साथ श्रुति। एंड यस, जिंदगी में बहुत सारे लोगों से मिली हूं और उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ना मजाक और पर्सनल अटैक में कुछ खास अंतर समझ नहीं आता, इसलिए आज मजाक करने वाले दो लोगों की डिस्कशन करना चाहती हूं। फर्स्ट आर द पीपल जो समझदार हैं, ये वेल रेड हैं एंड ये ना अपने मजाक से किसी और को ऑफेंड नहीं करते हैं। ये अगर किसी से मजाक करते हैं तो भाई सामने वाले को ना बुरा नहीं लगता, बल्कि वो इंसान इस इंसान के साथ मिलके और ठहाके लगाता है। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी ऑफ मजाक करने वाले लोग हैं, ये ना थोड़े दिमाग से पैदल से लगते हैं मुझे यार, क्योंकि ये मजाक के नाम पे पर्सनल अटैक करते हैं। वो किसी के रंग ढंग को लेकर हो, बॉडी टाइप को लेकर हो, सेक्सुअलिटी को लेकर हो, और इन सारी गलीज हरकतों को वो डार्क ह्यूमर का चोंगा पहना देते हैं। वैसे आज के डेट में इंडिया में तो हर दूसरा कॉमेडियन यही काम कर रहा है, बट एक्चुअल में अगर आपको डार्क ह्यूमर समझना है तो भाई वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट दैट इज मासूम राजवानी के कंटेंट को एक बार जरूर चेकआउट करना। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: दोस्त, अगर जिंदगी में इतने उल्टे पुल्टे चैलेंजेस लेते ही रहते हो तो जरा मेरा फिल्मी उल्टा पुल्टा चैलेंज लेके देखो ना।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: सो द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके अपना नंबर भेजना होता है, फिर मैं कॉल करती हूँ और आपके साथ इस चैलेंज की शुरुआत करती हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक फिल्म का नाम उल्टा बताती हूँ, आपको सही नाम गेस करना होता है। तो आज हमारे साथ सबसे पहले गुड़गांव से टेलीफोन लाइन पे जुड़े हैं अरुण रावत जी। तैयार है सर?
3: हाँ।
0: तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं। तो मेरा पहला सवाल है, ए दिल है आसान,
3: ए दिल है मुश्किल,
0: तू सच्ची मैं ईमानदार,
3: तू झूठी मैं मक्कार,
0: जवान होगा तेरा बेटा,
3: बुढ़ा होगा तेरा बाप,
0: क्या बात है, ह्यूमन
3: जानवर,
0: दो समझदार गांव में,
3: दो दीवाने शहर में,
0: ओके जी, डियर मौत,
3: डियर जिंदगी,
0: क्या बात है, हमेशा हेलो कहते रहना,
3: कभी अलविदा ना कहना,
0: बहुत बढ़िया, बेटी,
3: बेटा,
0: कोई खो गया,
3: कोई मिल गया,
0: अडल्ट,
3: बच्चा, नहीं, बेबी, बेबी,
0: यस, पुरुष,
3: औरत, स्त्री, स्त्री, सॉरी, स्त्री,
0: क्या बात है, बोल बोल के,
3: चुप चुप के,
0: बहुत ही बढ़िया, थोड़ा सा टाइम लगा आपको पिक करने में, बट यू एक्चुअली डिड रियली गुड सर,
3: थैंक यू,
0: थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग इन योर नंबर।
3: एक्चुअली मुझे थैंक यू बोलना चाहिए आपको कि आपने मेरे को माने कांटेक्ट किया, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि आप मुझे कांटेक्ट करोगे।
0: अरे ऐसे कैसे नहीं करेंगे सर, वी थ्राइव ऑन दिस कनेक्शन दैट वी बिल्ड। तो गाइस, अगर आप भी मेरे शो पे किसी गेम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मिर्ची श्रुति के इंस्टाग्राम पे जाके मेरे डीएम सेक्शन में अपना नंबर जरूर भेजिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हमारी जिंदगी के वो गोल्डन डेज जब बॉलीवुड यूट्यूब पर नहीं हमारे टेलीविजन पर मिलता था।
1: 90 ml विद श्रुति।
0: यार देखो, आज अगर हमें एक गाना सुनना होता है तो एक नहीं कई ऐसे एप्स हैं जहां बस एक क्लिक पे आपको वो गाना अवेलेबल मिल जाएगा। बट 90s में इतना इजी नहीं होता था कुछ भी। तब आपको अपने फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग्स देखने के लिए गाना नहीं टाइमिंग याद रखनी पड़ती थी, क्योंकि चित्रहार आता था दूरदर्शन पर और हम टीवी के सामने ऐसे बैठते थे जैसे आज का यूट्यूब प्रीमियर हो। 1982 में शुरू हुआ था ये शो, जो हिंदी फिल्म्स के सिलेक्टेड सॉन्ग्स एंड डांस सीक्वेंसेस को घर घर लेकर आया था। एंड बाय 80s एंड 90s इट हैड बिकम अ मैसिव पार्ट ऑफ एवरी इंडियन फैमिली। इनफैक्ट 1995 में योजना मैगजीन ने तो चित्रहार को एक नेशनल क्रेज भी घोषित कर दिया था। और इस शो के अलावा संडे का बेसब्री से इंतजार होता था, क्योंकि सुबह सुबह आती थी रंगोली जो अपने साथ लाती थी पुराने और नए हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का एक पूरा म्यूजिकल पैकेज। मतलब वीकेंड का एंटरटेनमेंट एल्गोरिदम भी दूरदर्शन ही डिसाइड करता था हमारे लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, आज हम कोई भी गाना स्किप कर देते हैं अगर 5 सेकंड में हमें वाइब नहीं मिलती, बट तब ना एक फेवरेट सॉन्ग के लिए पूरा प्रोग्राम देखना पड़ता था। और जैसे ही आपका वो फेवरेट गाना बजता था बस घर में किसी को भी चैनल चेंज करने की परमिशन नहीं होती थी। तो इसी बात पे गो डाउन योर मेमोरी लेन एंड याद करो कि आप चित्रहार में कौन से एक स्पेसिफिक गाने का इंतजार किया करते थे। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और यहाँ के अलावा मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: जिंदगी में आप चाहे कितना भी आगे निकल जाए, बर्थडे आता है ये बताने कि मेरे भाई तुम एक साल और बुड्ढे हो जाए। जिंदगी के हर साल दर साल जैसे जैसे आगे निकलते जाते हैं, मुझे घबराहट इस बात की होती है कि इस साल कितनी दवाओं में इजाफा हुआ। तो बस अच्छी सेहत के ऊपर वाले से दुआ की है, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए, सब ठीक रहे। शाम के 4:05 होने को आए, मतलब 4 मिनट, और ऐसे में आ गया मस्त फॉलो कर लेके शाम शानदार।
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: हाँ जी, और जब आ गए हैं तो बातों का सिलसिला शुरू करेंगे, और सबसे पहले यही बताएंगे कि देखिए जिंदगी में कुछ भी हो जाए दोस्त, ये मौसम का जादू कभी खत्म नहीं होना चाहिए। जैसे आज सुबह हवा चल रही थी, दोपहर तक ह्यूमिडिटी हो गई, फिर शाम को क्या हुआ नहीं पता, लेकिन अगले 2 दिनों में ये कहा जा रहा है कि हमारे कतर में जो हवाओं का दौर है वो और ज्यादा होने वाला है। तो घबराइए मत, हवा आने से ह्यूमिडिटी कम होगी और तापमान कम होगा, अच्छी फीलिंग आएगी। अब देखिए अगस्त खत्म होने को आ गया, लास्ट डे ऑफ अगस्त, और बस इतना ही कहेंगे सितंबर के 10-15 दिन निकल जाएंगे, फिर चीजें अच्छी हो जाएंगी। रोज शाम फिर माहौल बनेगा 89.6 पर, माहौल बनेगा अगले 4 घंटे शाम शानदार में, ऊंचे लंबे कद का गाना आनंद राज आनंद रुबाई की आवाज में मिर्ची पर।

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana.
2: Gabbana.
1: Burga, burga. La virva la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello.
4: Hello.
3: हेलो
4: हाँ
3: बोलो कौन
4: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
3: हाँ बोल कौन रहा है
4: बोल कौन रहे हो कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की नीचे से बोल रहा हूँ आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ
3: बोल कौन रहे हो
4: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
3: हाँ बोला था
4: ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
3: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर
4: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ
3: हाँ बोलो
4: ओए यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
3: कौन बोल रहा है कहाँ घुस गए यार
4: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
3: हाँ हाँ बोला था हुआ क्या है कुछ तो बताओ
4: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ ओए यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर
3: कब आया था कब घुसा अंदर
4: फिर सवाल यार मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके
3: तू कहाँ करा है तो नहीं हो गया है
4: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में बाहर निकालो यार
3: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने
4: ऑफिस क्यों गए सीवर साफ करवाना था मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर
3: मेरी सीवर में घुसा है किसी और के सीवर में घुस गया
4: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार
3: के सीवर में मरा रहा है तू
4: गाली तो मत दो
3: हेलो
4: हेलो
3: फिर फोन कर दिया तूने
4: अच्छा सीवर साफ हो जाएगा काम करो एक चीज बोलो
3: क्या बोलो
4: कुकड़ुकू
5: सर आई एम सो सॉरी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका पर क्या
3: कुकड़ुकू
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
7: रेडी
8: टू लर्न
7: यस
8: टू प्ले
7: एब्सोल्युटली
8: टू ग्रो
7: विद मेजराती
8: दिस स्कूल सीजन फ्यूल एवरी डे विद डिलिशियस एंड न्यूट्रिशियस मेजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स
7: मिल्क चीज योगर्ट लवने
8: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
9: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
10: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला लेकिन उसे पता है
11: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
10: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available.
11: Blow your mind. She is coming for the very first time.
10: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham,

कोई आपसे नजरिया मिला रहा है लेकिन कोई आपसे उधार लेके नजरिया चुरा रहा है, तो आप परेशान ना हो, एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। 89.6 पर मस्त मौला गौरव आपको बताना चाहता है कि कतर में एक बहुत बड़ा सवाल सामने आया है कि कैन व्हाट्सएप टेक्स्ट या वॉइस मैसेज किसी के उधार को कतर में प्रूफ कर सकता है। लॉयर ने आंसर दे दिया है, यस, प्रूविंग अ डेब्ट इज नॉट नेसेसरी लिमिटेड टू हैविंग अ रिटन डॉक्यूमेंट। हाँ जी, अदर मींस ऑफ प्रूफ भी माने जाएंगे जिसमें टेक्स्ट मैसेज से लेकर आपको दिए गए बैंक चेक्स, बैंक ट्रांसफर्स, ये सब मायने रखते हैं। और बड़ी बात यह है कि जब कतर टीवी पर यह बात अल हरमी साहब ने कही तो उन्होंने ये कहा

कहा कि बहुत सारी जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जो है वो इंपॉर्टेंट एविडेंस जरूर हो सकते हैं अमाउंट को क्लेम करने के लिए, लेकिन ये लीगल एंड टेक्निकल रेगुलेशंस पे ही होगा कि ये किस हद तक काम आएगा। वेल, कुल मिलाकर बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, हमारे पास मैसेजेस है जहां पर इन्होंने कहा था ये उधार चुकाएंगे लेकिन वो वापस नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में एक हद तक इन्हें सबूत माना जाएगा, लेकिन एकदम अल्टीमेट सबूत है ये नहीं हो सकता। हालांकि इसको आपको प्रूव भी करना पड़ेगा कि ये टेक्स्ट मैसेज सही है कि गलत है। बिल्कुल मिलाकर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आने वाले दौर में प्रॉब्लम्स आएंगी तो कैसे होगा, और क्योंकि पेमेंट बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू हो रहा है, अब तो ट्रांसफर्स हो रहे हैं, तो बहुत हद तक चीजों को माना जाएगा, लेकिन एकदम अल्टीमेट सबूत है व्हाट्सएप टेक्स्ट या मैसेज, इस पर यह जवाब आया है कि नहीं, ये सब कुछ रेगुलेशंस एंड रूल्स पे ही कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा, उसी के हिसाब से आपको न्याय या इंसाफ मिल सकता है। 89.6 मेरी जीवन पर मस्त बोला गौरव, सही कहता है कि भाई जिसका लिया उसका दिया, हमने कभी किसी से न लिया न टाइम पे वापस किया, लेकिन जब लिया तो समय थोड़ा लगाया लेकिन वापस दिया। 89.6 मिर्ची वन, आपको हम बिना कुछ लिए एंटरटेनमेंट देते। अगला गाना मिर्ची पर, इट्स हॉट, गुरु नवा हनी सिंह नेहा कक्कड़।

0: विनोद राठौड़ की आवाज में ये गाना आपको सुनाया किसने?
1: मस्त मौला गौरव।
0: एंड देवी और सजनों, मिर्ची घड़ी का टाइम शाम के 4:47 एंड इट्स टाइम फॉर
2: गोल्ड अपडेट।
0: एंड अल फरदान एक्सचेंज गोल्ड अपडेट में मस्मोला गौरव आपको बताना चाहेगा, पैम्प गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार 1 ग्राम इज 604 कतरी रियाल, वहीं 5 ग्राम आपको मिलेगा 2843 कतरी रियाल, 10 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार 5616 कतरी रियाल, 1 ounce विल कॉस्ट यू 17363 कतरी रियाल एंड 10 तोला गोल्ड बार 64494 कतरी रियाल। तो ये थे गोल्ड अपडेट फ्रॉम अल फरदान एक्सचेंज 89.6
2: Stay ahead of today's gold rates with Al Fardhan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars
3: and earn Qatar Airways Avios today.
2: Visit our branches or download the app now.
0: So, I am salary transfer here. Right time to invest in gold. 89.6 Mirchi 1. It's hot. Aam Malhari Gana Sunay.

0: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए। मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
1: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
2: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
3: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है।
4: शी कैन रीड योर माइंड। शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
1: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: एक गरम चाय की प्याली हो। क्या आवाज है अनु मलिक साहब आपकी, लेकिन ये गाना हमारे कतर पे सूट करता है। मौसम चाहे जैसा भी हो, हम गरम करक की प्याली हमेशा अपने हाथों में रख सकते हैं।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट
0: बात करें तो एक बार फिर से दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, दिन का मिनिमम विल बी 32। बड़ी बात यह है कि कल से हवाओं की रफ्तार शायद और बढ़ेगी। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हवाएं हालांकि आज थोड़ा हॉट तो फील करा रही हैं, पर घबराना नहीं है। पी के पानी कोसते रहना है सूरज चाचू को ताकि दया आए और टेम्परेचर नीचे की तरफ जाए। एंड कल उम्मीद की जा रही है मैक्सिमम टेम्परेचर अराउंड 42 रहेगा। तो कुल मिलाकर अभी गर्म दिन थोड़े और रहेंगे, इसलिए आइए रंभा हो करें मधुबंती बख्शी की आवाज में मिर्ची पर इट्स हॉट।

0: विशाल मिश्रा की आवाज में तबाही सुनाया किसने? दोस्तों बारी आ गई घड़ी का टाइम बताने की, तो वो भी बता दें 5:03 होने को आ गए।
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: हाँ जी, तो मस्त बोलो गौरव इतने कहेगा। देवी और सजनों बारी आ गई है इस घंटे खेलने की, वजह जिसे कहते हैं और पहचान कौन में आज की आवाज बड़ा ध्यान से सुनिए।
2: ऐसा कोई एक्साइटिंग नहीं होता है। There's something or the other always. I feel in our field there's never, क्या बोलते हैं, there's never a dull moment.
0: There's never a dull moment. और ये आवाज किस bold lady actress की है?
2: ऐसा कोई एक्साइटिंग नहीं होता है। There's something or the other always. I feel in our field there's never, क्या बोलते हैं, there's never a dull moment.
0: There's never a dull moment. और भाई ये अपनी एक्टिंग से डल मोमेंट को भी एकदम एक्साइटिंग बनाती है।
2: ऐसा कोई एक्साइटिंग नहीं होता है। There's something or the other always. I feel in our field there's never, क्या बोलते हैं, there's never a dull moment.
0: भाई शानदार तरीके से हमारे मिर्ची लिसनर्स बिना बोले ये जवाब भेजने लगे, दिल से थैंक यू यार, इतना प्यार करने लगे इस कॉन्टेस्ट से आप। वेल फिलहाल 5:00 पर वॉइस नोट में अपना जवाब भेजिए कि गौरव ये जो आवाज आपने सुनाई है ना वो इस एक्ट्रेस की है। 5:00 पर वॉइस नोट में अपना जवाब भेजिए कि गौरव जो आपने आवाज सुनाई है ये फला की है, ये फलाइन एक्ट्रेस है, धिमकानी एक्ट्रेस है, आपको बताना पड़ेगा। मैं आपकी बातों का इंतजार कर रहा हूं, अपनी आवाज में रिकॉर्ड करिए, फटाफट से व्हाट्सएप 5:00 नंबर पे भेज दीजिए, मैं यहां रेडियो मिर्ची पर सबको सुना दूंगा ताकि कदर को पता लग जाए कि जब बात एक्ट्रेस की आए तो सब उसको पहचान जाएं, क्योंकि हम लोग बॉलीवुड के हीरोइंस के बहुत बड़े फैन है। 89.6 मिर्ची 1 इट्स हवा।

0: Energy.
1: Escabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na vie para burga. Energy, burga.
2: हेलो
3: हेलो बेटा नवनीत,
2: आप कौन?
3: पापा कहाँ हैं?
2: पापा तो बाहर हैं, बताइए।
3: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं, हम हाँ। बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
2: लेकिन आपको काम क्या है?
3: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
2: पापा ने कहा था?
3: चुप कर। पापा ने कहा था मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मतर को।
2: क्या हुआ अंकल?
3: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना, मेरे जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
2: अब मुझे क्यों डांट?
3: चुप कर।
2: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूं।
3: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूं मैं। क्यों कर रहा है ऐसा तूने?
2: पापा को ऐसे किस बात का बुरा लगा? मुझे ये भी नहीं,
3: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है? असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
2: लेकिन बुरी क्या लगी?
3: अंकल कल देखो एक मारूंगा।
2: बदतमीजी क्या करी थी?
3: ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ू?
2: कह रहा हूँ मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
3: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
2: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
3: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
2: क्या बोलू?
4: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
2: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
3: चुप कर, मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: ड्रिवन बाय शैकमैन ट्रक्स, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर। शैकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स, पावर दैट सेव्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप।
7: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
8: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

0: जुदाई, चार दिनों का प्यार ओ रब्बा, लंबी जुदाई लंबी जुदाई, तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना। कह रहे हो के चला, ऐसा लग रहा था मस्त मौला गौरव ने गा दिया,
1: मस्त मौला गौरव, मस्त मौला गौरव।
0: पर जन्नत का ये गाना माय ऑल टाइम फेवरेट, रिचा आपकी आवाज शानदार है, लेकिन फिलहाल बारी आई खेलने की। एक आवाज सुनाते हैं और पूछते हैं बताओ ये आवाज किसकी है, और ये आवाज है
2: कोई exciting नहीं होता है। There's something or the other always. I feel in our field there's never क्या बोलते हैं, there's never a dull moment.
0: Okay. और मैंने ये पूछा था किसकी आवाज है।
3: Good evening गौरव, this is Abhilash. I think the voice not that you paid is of Janhvi Kapoor's.
4: Good evening गौरव, how are you? कैसे हैं आप?
0: यूसुफ
4: with you. ये आवाज है तब्बू की. Okay. Thank you. Bye bye. Okay.
5: Hello. Good evening. Bijoy here.
0: Bijoy बताएं.
5: ये जो आवाज आपने सुनाई है ये मुझे लग रहा है कि तब्बू हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू की है.
6: हेलो गुड इवनिंग गौरव, ये आवाज तब्बू का है. तब्बू, मेरा नाम गोपाल.
0: पहले तो भाई तब्बू के फैंस के लिए तालियां हो जाए. इतना आसान नहीं है क्योंकि जब आप फिल्मी एक्ट्रेस को ऐसे फिल्मों के डायलॉग बोलते सुनते हैं तो आपको समझ में आता है, लेकिन जब वो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रही हो वहां पर आप उनकी वॉइस पढ़ लें तो ये तो मजेदार बात है. तब्बू इज द राइट आंसर फॉर आज का पहचान कौन. एंड मस्त बोलो गौरव के साथ जो लोग जीते हैं अब वो कमरिया गाना हिलाएंगे, उनसे कमर हिलाएंगे और गाना सुनेंगे दर्शन रावल की आवाज में मिर्ची पर. इट्स हॉट.

0: ऑफ एक्सलेंस इन कतर। घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू iPhone 17 Pro Max। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
1: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by

0: आज फिर दिल लेके
1: मस्त मौला गौरव मस्त मौला गौरव।
0: और उस जमाने की बात ही कुछ और होती थी जब ऐसे गाने भी एकदम दिल को छू जाते थे। फिलहाल के लिए मस्त मौला गौरव यही कहेगा कि लो जी सनम हम ले आए सुहानी को कतर में लेके। तो अगर आप चाहते हैं कि माइंड रीड करने की अनोखी दुनिया की मेंटली सुहानी शाह को आप देखें तो अपनी टिकट बुक करें SCTC नूनू पर। सैलरी आज आ गई है, मौका है, फटाफट से अपनी टिकट बुक कर लो क्योंकि इस वक्त आपको अर्ली बर्ड ऑफर मिल रहा है। एक बार खत्म हो गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर अभी आप SCTC नूनू से ले रहे हो 30 कतारी रियाल का कैशबैक मिल रहा है किसी भी कैटेगरी की टिकट पर। Yes, और ये बहुत बड़ा मौका है जहां पर आप अपने लिए टिकट बुक कर पैसे भी बचाओगे और साथ ही साथ अपने लिए गजब की शाम बुक कर पाओगे क्योंकि वहां सुहानी अकेले नहीं आ रही है। Yes, the mentally सुहानी शाह live in Qatar, sponsored by Qatar calendar, presented by IPE। इस शाम में और धमाकेदार बॉलीवुड तड़का लगाने आ रहे हैं सिंगर चरण एंड उनके साथ डांसर आसी। और ये जब दोनों के दोनों आएंगे ना तब आप कहोगे कि भाई अलग ही लेवल एनर्जी पहुंच गई है। तो एनर्जी खुद लेके आ रही है सुहानी, उनके साथ एनर्जी का डबल डोज देने डांसिंग एंड सिंगिंग डुओ चरण एंड आसी। ये सब कुछ यही होगा 25th of September QNCC में। जल्दी जाइए, टिकट्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग प्लेटफॉर्म्स। लेकिन SCTC नूनू पर अर्ली बर्ड ऑफर के साथ 30 कतरी रियाल का कैशबैक चल रहा है। मस्त मौला गौरव बता दिया, बाकी आप समझदार हैं, अपनी तरफ इशारा किया है, ध्यान रख लो, जल्दी टिकट बुक कर लो। तो जल्दी टिकट बुक कर लो। अगला गाना विशाल डलानी पायलदेव की आवाज़।

यही एक्सप्लेनेशन अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर बीवी को देते रहती, कह रही यार आदत है नहीं छूट पाएगी, कैसे छुड़वाना चाहती हो। लेकिन मैं कहता हूँ कभी कभी लड़कों को लड़कों के हालात पे ही छोड़ देना चाहिए, वो नहीं बदल सकते यार। फिलहाल बदल सकते हम और आप अपनी जिंदगी में कुछ पैसों का मीटर, क्योंकि आईपे एक्सचेंज रेट आ गया। राइट नाउ एक कतरी रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीज 26 रुपए 12 पैसे हैं, 26.12 टन से आया है आज सैलरी का मैसेज। तो घर भेज दो, घर वाले भी खुश हो जाएंगे। इसके बाद अगर बात करें तो आपको एक कतरी रियाल के बदले श्रीलंकन रुपीज मिलने वाले हैं 89.99। अगर हम बात करें जनाब पाकिस्तानी रुपीज के अगेंस्ट कतरी रियाल 76.19 पाकिस्तान रुपीज। अगर तपाई को नेपाली रुपीज का दाजो एक कतरी रियाल के बदले दाई 41.73 को भल रेट है दाया जी 41.73 को नेपाली पीस के रेट छा। अगर इसके बाद बंधु बांग्लादेश टका बात करेगा दादा एक टा कतरे रियाल के बदले 33.77 तो बाड़ी ठीक है भेजी दे। हाँ जी मस्त मोरो गौरव आपके साथ, ये था करेंसी एक्सचेंज रेट। और मेरे साथ स्टूडियो में बहुत सारे लोग हैं, उसके लिए करते रहो वेट। आ जाओ इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखते हैं मिर्ची।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: Sony Razdan, Alia or Shaheen, in dono mein se, who's most likely to listen to you, even today?
3: Difficult one.
4: Why?
3: Split between my children.
5: So both of them in different ways.
4: Yeah.
5: But yeah, they are receptive generally. But I think I must be irritating them a lot because I give too much advice. That's what you tell me. So kya bolu aapko?
2: Sony Razdan, aapne koi jawab nahi diya. आलिया या शाहीन किसी का नाम नहीं लिया. अगली बार जब आप आएंगे हम फिर से ये सवाल पूछेंगे. यू आर लिस्टिंग टू मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
6: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है.
9: शी कैन रीड योर माइंड. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Sham, ek stage aur do kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah.

0: 89.6 मिर्ची वन पर आवारा पन गया, लेकिन मुझे मम्मी हमेशा ही कहती थी आगे आवारा गर्दी कर कर, पर सच्चाई है कि भैया हम बहुत सीधे साधे लड़के हैं, नाम ही है मस्त मौला गौरव। लेकिन फिलहाल जब आपके साथ है तो घड़ी का टाइम बताने की जरूरत पड़ती है, 6:04 के करीब होने को आ गए।
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: देखिए अगर कुछ चंद दिरहम बचाए या थोड़े से पैसे बच जाए तो क्या बुराई है सर, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस फॉर सितंबर आ गए।
2: What is the price of fuel, you beauty fuel? Fuel update.
0: Well, कुल मिलाकर प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल की बात करें जिसको आप आधी बोल के अपनी गाड़ी में फिल कराते हैं, वो मिलेगा कतर रियाल 2 पर लीटर। वहीं सुपर ग्रेड पेट्रोल ये मिलने वाला है आपको 2.10 कतर रियाल पर लीटर। हाँ जी, प्राइसेस रिमेन अनचेंज फॉर प्रीमियम ग्रेड एंड सुपर ग्रेड। बेस्ट बात ये है एंड ऑल्सो द प्राइस ऑफ डीजल हैज नॉट चेंज, यानी कि कुल मिलाकर इस महीने आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे। इनफैक्ट पूरा सितंबर आपको वही प्राइस में मिलने वाली है फ्यूल जो मिल रही थी पूरे अगस्त के महीने। तो कुल मिलाकर सब कुछ अनचेंज्ड एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने हम सबको इसलिए बताया ताकि हम एकदम निश्चिंत होकर अपने लिए फ्यूल भरवाते रहें और कतर को थैंक यू कहते रहें, क्योंकि हमें पता है बैक होम क्या स्थिति है भैया। 89.6 मिर्ची वन, मिर्ची में सब बढ़िया, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. Na vietva la burka. Mirchi, burka.
1: Hello.
2: Good evening, Mr. Srivastav. I'm modern school se bol raha hu, aapke bete ke school se. How are you?
1: Thank you.
2: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है।
1: I know, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा। हाँ,
2: नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे। यू नो,
1: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
2: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो। आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे।
1: मतलब गेम है क्या ये?
2: आओ मिलो शिलो शालो,
1: मतलब पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
2: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है। आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए। राइट, देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह।
1: आओ मिलो
2: शिलो शालो,
1: शालो
2: कच्चा
1: धागा,
2: रेस
1: लगा लो,
2: दस
1: पत्ते तोड़े, एक पत्ता कच्चा।
2: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज से बोलेंगे दस पत्ते तोड़े
1: तोड़े
2: या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
1: दस पत्ते तोड़े,
2: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा,
1: ओके ओके सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा,
2: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
1: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
2: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को,
1: मिस्टर
2: श्रीवास्तव बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
1: यार ये कोई सुनेगा
2: सर, ये सर ये सब सुन चुके हैं। अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
4: इट्स ऑल डाउन एंड डन, इज़न्ट इट? फोर बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
6: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर, प्रेजेंटेड बाय आईबी।

0: वैसे फुटबॉल के लिए इतना जरूरी कैसे हुए किसी को कभी पता ही नहीं चला।
1: मस्त मौला गौरव।
0: लेकिन एक बार जिसने इनका गेम देखा वो इन्हीं का हो चला। बात कर रहा हूँ मैं लायनल मेसी की। एंड फाइनली उन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लिया है। यस, मस्त मौला गौरव यहाँ आपको बताना चाहता है, अर्जेंटीना नेशनल टीम कैप्टन लायनल मेसी हैज फाइनली अनाउंस द रिटायरमेंट और अब वो इंटरनेशनल फुटबॉल पर फिर से शायद दिखाई ना पड़े। यस, सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए सही, पर उन्होंने अब कह दिया, आफ्टर ऑल दिस टाइम दैट पास सिंस द फाइनल्स, हैविंग थॉट अबाउट इट अ लॉट, आई वांट टू इन्फॉर्म एवरीवन दैट आई एम रिटायरिंग फ्रॉम द नेशनल टीम। और ये सुनते ही लायनल मेसी के फैंस की आंखों में आंसू आ गए दोस्तों। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है मेसी आपको हम हर वक्त ढूंढेंगे, जब भी अच्छा फुटबॉल जबकि खेलने की बात आएगी, पीपल लव यू एंड आई एम श्योर दे गोना मिस यू। पर हर अच्छी चीज की शुरुआत होती है, उसे कभी ना कभी दी एंड होना ही पड़ता है। एंड आप जब तक रहे आपने सबके दिलों पर बहुत कुछ किया, राज किया, और वो राज ऐसा किया कि पूरी दुनिया आपकी फुटबॉल फैन हुई। एंड 2022 हम कतर में लगी थे, हमने आपका वो फाइनल करिश्मा देखा जहां पर आपके हाथों में वर्ल्ड कप ट्रॉफी देखी। एंड फाइनली वो टाइम जब आपके अलविदा लेने पर हम ये अगला गाना आपको डेडिकेट कर रहे हैं। फॉर ऑल दी लायनल मेसी फैंस ऑन हिज रिटायरमेंट, दिस इज द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर मेसी, मिर्ची थॉट।

0: भाई ये दोनों क्यों मेरे लिए इतना बड़ा ट्रैप बना रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
1: मस्त मौला गौरव।
0: अरे दुनिया में इतने लोग हैं, उनसे कहो कि सुहानिशा जब आएगी तो उसका दिमाग पढ़वाएंगे। मेरे दिमाग के पीछे बड़े यार आफरीन, अंशु, ईशा सब कह रही है गौरव जब सुहानिशा आएगी ना सबसे पहले हम तुमको ही मिलवाने वाले। हम नहीं मिलने वाले यार, इतनी बार बोल रहे। मेरे दिमाग में क्या है वो मेरे अंदर रहने दो ना। तुम लोग क्यों चाहते हो दुनिया के सामने आए। 25 सितंबर QNCC में सुहानिशा लाइव इन कथा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, स्पॉन्सर्ड बाय कथा कैलेंडर, प्रेजेंटेड बाय आईपे। एंड ट्रस्ट मी, ये वो शाम है जहां पर बहुत लोगों का पर्दाफाश होने जा रहा है, क्योंकि सुहानी ना माइंड रीड कर लेती है यार। और मुझे इस चीज के बारे में जैसे ही पता लगा, मैंने कहा मैं आखिरी शख्स होऊंगा जो गेट के बाहर से अंदर घुस रहा हूंगा, क्योंकि मैं सबको पहले अंदर भेज दूंगा और सुहानी की नजरों से बच के मैं वहां रहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा दिमाग पड़े। मैं शातिर दिमाग है यार, और मैं कितना भी खेल कर लूं मुझे पता है ये लड़की पढ़ लेगी यार, क्योंकि इसने आमिर और सलमान को नहीं छोड़ा। हम तो फिर भी छोटे मोटे आदमी है यार। वैसे उम्मीद है अगर आपको ये डेयरिंग लेनी है तो बुक योर टिकट्स नाउ एट ऑल लीडिंग प्लेटफॉर्म, बट एस सिटी स्नूनू पर ये राइट नाउ 30 कतारी रियाल कैशबैक के साथ चल रहा है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, एक बार आपने टिकट बुक कर ली तो सुहानी के साथ साथ डांस डुओ, बोले तो सिंगिंग एंड डांसिंग यानी कि चरण आसी, दोनों के दोनों परफॉर्म करेंगे यहां QNCC में। इस शाम की टिकट बुक करो एंड कतरी रियाल 30 का कैशबैक एट एस सिटी स्नूनू। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
1: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
2: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
0: उसे सब पता है.
3: शी कैन रीड योर माइंड. शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snow. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: जॉब की वजह से मेरी नींद ही पूरी नहीं होती, क्या करूं?
1: तो तू एक काम कर, नाइट सिक्योरिटी की जॉब छोड़ दे और दिन में काम कर, सिंपल है।
2: I'm joking.

0: आज कतर के घर घर में जब पत्नियां पतियों से सवाल पूछ रही हैं, लड़कियां अपने फ्रेंड से सवाल पूछ रही हैं, तो धमकी दे रही हैं, सच सच बता दो वरना सुहानी आ जाएगी। Yes, 25th of September, QNCC में आने वाली है सुहानी शाह। फिलहाल मिर्ची घड़ी में शाम के 7:04।
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: Yes, तो मैं आपको बता रहा था कि सुहानी शाह की धमकी दे रहे हैं लोग कि तेरे अंदर दिमाग में जो भी मेरे लिए पल रहा है ना, मैं सुहानी से पूछ के बता दूंगी। और इसीलिए हम कह रहे हैं जब सुहानी आ रही है तो सोशल ड्राइव को जिम्मा दे दिया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो प्रमोट करेंगे टीम सोशल ड्राइव की तरफ से, आज वो सब के सब स्टूडियोज में है। कैसा लग रहा है तुम लोगों को? आर यू गाइस रेडी टू वेलकम सुहानी शाह इन कतर? भाई यहाँ तो गजब एनर्जी है, जोश इज वेरी हाई, बट नो डाउट डैनियल बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं मन के एक कोने में खौफ है कि मेरे घर वाले भी मेरे दिमाग को पढ़ना चाह रहे हैं सुहानी के थ्रू।
2: भाई मैं तो एक ओपन बुक हूँ, मेरे को तो कोई पढ़ ही नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि सुहानी शाह भी आके बोलेगी कि भाई इसके जैसा साफ सुथरा बंदा पूरी दुनिया में नहीं है।
0: यही सोच के मैं भी जाना चाह रहा था, लेकिन फिर लोगों ने बताया वो सच पढ़ लेती है मेरे भाई। रिस्क मत लो, मैं चाहता हूँ तेरे घर में रोटी मिले, स्ट्रगल नहीं।
2: नहीं लेकिन बड़ा मजा आने वाला है, जोक्स अपार्ट वी ऑल आर एक्साइटेड। हमने जितने वीडियोस देखे ना सुहानी शाह के,
0: अल्टीमेट
2: सारे सेलिब्रिटीज के साथ, सलमान खान हो, सुनील शेट्टी हो, विराट कोहली
0: सबको हिला दिया भाई।
2: भाई हमें लोग चौंक जाते हैं कि इस बंदी के अंदर है क्या जो ढूंढ के निकाल दिए।
0: और भाई इसीलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी, कहा कि पढ़ने के लिए तब लोग दिमाग पढ़ूंगी। क्लास वन में थी 7 साल की छोटी सी उम्र और छोड़ दी पढ़ाई। कह दिया भाई कि मैं अब दिमाग पढ़ूंगी, पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा है। लेकिन इसका तो नहीं कि आप भी अपनी पढ़ाई छोड़ के दिमाग पढ़ने लग जाएं, वो काम उसी को अच्छा लगता है।
2: गौरव भाई अगर किसी को आना है तो कहां से टिकट बुक करनी है?
0: भाई टिकट्स आपको हर प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, ऑल अवेलेबल लीडिंग प्लेटफॉर्म्स पे टिकट्स है, पर एससीटी सुनू पर राइट नाउ आपको 30 कतरी रियाल का कैशबैक मिल रहा है इन एनी टिकट कैटेगरी। अपनी टिकट जल्दी जल्दी खरीद लो क्योंकि हमारे इन्फ्लुएंसर्स अब जल्द ही नजर आने वाले हैं अपने अपने वीडियोस में, जहां वो बता रहे हैं कि कहां कहां क्या क्या होने वाला है और उनकी तरफ से क्या होने वाला है।
2: एग्जैक्टली, और हम टीम सोशल ड्राइव बहुत एक्साइटेड है। हमारे तरफ से भी हम अपने लिसनर्स को, हमारे ऑडियंस को दे रहे हैं, तो फिर बड़ा मजा आने वाला है। स्टे ट्यून गाइस, और देखना ना भूलिए मिर्ची वन के पेज पे ये सारी आज की जो शाम में जो हमने मस्ती की है ना, मस्त मौला गौरव का बर्थडे, सारी चीजें आप देख सकते हो जाके पेज के ऊपर। और एक अच्छी, सबसे अच्छी बात पता क्या है कि 30 रियल कैशबैक आप लोग को मिल रहे
0: हैं। यार ट्रस्ट मी, आप पहले तो टिकट खरीदो, ऊपर से हम आपकी बचत भी करा रहे हैं। अच्छी बात बताओ तो भी लोग दुआएं नहीं देते, आज तो जन्मदिन है, आपकी तरफ से दुआएं आनी चाहिए। एंड कीप लिसनिंग मिर्ची।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga.
0: Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hello. Hello.
2: भैया आवाज साफ नहीं आ रही, कम आ रही है आवाज।
3: भाई साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
2: हाँ जी।
3: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
2: अच्छा अच्छा,
3: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दिए, ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
2: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
3: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप बंद कर इसको, बंद कर। रमेश इसे बंद कर दे यार। आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले।
2: मैं
3: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
2: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
3: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
2: तो ड्रिल मशीन हमारा लेके तो चोरी करने गया।
3: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
2: चोरी करने के लिए
3: तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
2: यहाँ पे ड्रिल मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा है, मुझे फंसवाएगा।
3: मेरी बात सुन,
2: तू मुझे मरवाएगा, मुझे फोन कर दिया।
3: मेरी बात सुन।
2: हेलो
3: यार, कमाल है, आप तो मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
4: सर मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
2: कहाँ से बोल रहे भैया?
4: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
3: अब ठीक है।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स पटाक।
7: इट्स ऑल डाउन टू धोनी, इज़न्ट इट? फोर बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
8: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
9: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
8: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snow. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: आई नहीं जरूर आएगी अगर उसको अच्छे खजूर पेश करके खिलाओगे।
1: मस्त मौला गौरव 89.6
0: पर मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने जो कि एग्रीकल्चर अफेयर्स डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करती है, उन्होंने कहा है कि 2026 लोकल डेट्स परचेजिंग सीजन जो है वो अब ऑन हो चुका है। यानी कि अगर आपको लोकल डेट्स परचेज करनी है, दिस इज द राइट टाइम। एंड मिनिस्ट्री ने इसकी शुरुआत कर दी है। मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो लोग लोकल फार्म से डेट लेकर आते हैं अगर उनको बेचना चाहते हैं तो ये परचेजिंग सीजन ऑन हो चुका है एंड दिस विल रन अंटिल सितंबर 17th। यानी कि अब अगले 17 दिनों में कतर के जो लोकल फार्मर्स हैं वो अपने नेशनल डेट प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, कतर में फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए जाकर अपने अपने खजूर बेच सकते हैं। एंड विश्वास कीजिए हजूर, जिंदगी में आप किसी भी डेट पर गए हो वहां खट्टा मीठा अनुभव हुआ होगा, लेकिन जब बात डेट आते तो हमारे कतर के खजूर, हजूर इनकी बात ये लगे ये सिर्फ मीठा अनुभव देती है। 89.6 मिर्ची वन। लेकिन हम खजूर की बात करते, गेंदा फूल आ गया। चलो बातचीत शुरू कर दो यार।

अटक, लौंडों के दिल पटक पटक, सांसें जाए अटक अटक, आता माझी सटक सटक, बम तेरा गुदे खाए, कमर पे तेरी बटरफ्लाई, बॉडी तेरी मक्खन जैसे, खाने में बस तू बटर खाए। Come on baby, kick it, kick it, काटू तेरी टिकट टिकट, खेलता नहीं क्रिकेट विकेट, पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: सा रंग तेरा, बावला सा ढंग तेरा, मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा। तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़। I am the baddest motherfucker.
1: Yeah. Hard to be.

89.6 मिर्ची 1 पर आपके साथ कौन है? जब देवी और सज्जनों में आपके साथ होता हूँ तो मैं बातों को बहुत आराम से प्रस्तुत करता हूँ ताकि आपको जिंदगी में ऐसा लगे कि गौरव कितना अच्छा बोलता है। अब जैसे देखिए बच्चों के लिए कितना इंपॉर्टेंट था स्कूल जाना, अब बैक टू स्कूल शुरू हो गया, बच्चों की पढ़ाई का रूटीन आ गया और मम्मीज के लिए अब बहन चुगली करे का टाइम भी आ गया। भाई आफ्टरऑल अब बच्चों की टेंशन हो गई है खत्म, दोपहर में सब कुछ सॉर्टेड है, जैसे ही पति देव ऑफिस निकले बच्चे स्कूल, मम्मीज का अपना काम होता है शुरू। हेलो, आज कहाँ करना है लंच या कहाँ चलेंगे हम लोग चाय पर? बिल्कुल मिलाकर मम्मीज का मी टाइम फिर से शुरू हो गया है एंड अलग अलग प्लानिंग चल रही है, जल्द ही मिर्ची भी कुछ लाएगा, लेकिन जो मिर्ची अभी लेकर आया है उसके बारे में बात करनी है। यस, 25th ऑफ सितंबर QNCC में RAS वानिशा लाइव इन कतर, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर, प्रेजेंटेड बाय आईपे, जहां पर आपको अपनी टिकट्स बुक करनी है। एंड टू बुक योर टिकट्स गो टू ऑल लीडिंग प्लेटफॉर्म्स जहां पर टिकट्स अवेलेबल हैं, लेकिन क्योंकि अर्ली बर्ड ऑफर के साथ साथ आपको 30 कतारी रियाल का कैशबैक मिल रहा है, सो गो एंड बुक इट ऑन SCTS नूनू, जहां पर इसका फायदा तो आप उठा ही सकते हो। अब इसी उम्मीद से कि आप अपनी टिकट्स बुक कर रहे होंगे, मस्त बोलो गौरव आगे एक और गाना आपके पास छोड़ रहा है। बैड न्यूज है लेकिन गाना हाय तौबा तौबा क्या मजेदार है।

0: एक्सलेंस इन कतर। घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिजो मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिजो मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
1: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: प्राग की आवाज में मन भर गया इस गाने से। नहीं यार, ऐसा हो नहीं सकता। जब आवाज भी प्राग की हो, मन कभी नहीं भरता। मस्त मौला गौरव। लेकिन दोस्तों, आज केक खा के मन भर गया है यार। मतलब सारे दोस्त यार केक पे केक कटवाते हैं और कहते हैं गौरव खा। जब भी आप ना फास्टिंग पे जाओगे, जब भी आप ऐसा सोचोगे कि आपको डाइट करना है, ट्रस्ट मी, उसी टाइम आपके दोस्त आपको बेस्ट ट्रीट देने की तैयारी करते हैं। और आज मेरे साथ यही हुआ है। लेकिन मैं भी एकदम ना शातिर हूँ। मैंने कहा जब पार्टी मिली रही है तो खा लो, बाद में देखा जाएगा, एक दो वर्कआउट के सेशन और हो जाएंगे। इसी सोच में अगर आप भी खा रहे हैं तो कोई बात नहीं दोस्त, एक ना एक दिन हम दोनों का फैमिली पैक बनेगा। आई मीन से सिक्स पैक। 89.6 मिर्ची वन से फिलहाल मी सिंह टर्बो बाय लौटेंगे एक बार फिर से कल शाम। लेकिन तब तक के लिए साहिबान मेहरबान कदरदान, कीप लिसनिंग मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल।
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: दिल्ली बेली, जलसा ब्राउन जैसे कंटेंट के क्रिएटर मिस्टर अभिनय दियो,
4: हु वाज मोस्ट लाइकली टू रिमूव बाल की खाल, मतलब तह तक, जवाब वो बताओ।
5: वेट
4: टेल,
5: आई हैव अ लिस्ट। भयंकर समय लग जाएगा तो उसके अंदर ना घुसे तो ही बेटर है। बट मेरे सब लोग आजू बाजू में वही हैं, सब बाल की खाल निकालने वाले ही हैं। आई टेल यू व्हाट, आई मीन ही इज पास्ड अवे, बट माय फादर, माय गॉड, एनीथिंग दैट आई डू, एनीथिंग दैट एनी स्क्रिप्ट हैज सेड, बट ऐसा क्यों? अरे भाई साहब, फिल्म है, इमेजिन, नो, बट व्हाई? And he was a filmmaker, an actor himself.
3: Abhinay Deo, the director, is talking about his father, Ramesh Deo, one of the finest actors the Hindi and the Marathi cinema has seen. Aap sun rahe hain Mirchi, it's hot.
2: Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.

0: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
1: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
2: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
0: उसे सब पता है।
3: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, she is coming for the very first time.
0: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snow. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1. It's hot.
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
3: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot.
4: The show starts in.
5: कुछ साल पहले तक बॉलीवुड को लगता था कि ऑडियंस को क्या चाहिए वो उसे पता है। फिर ऑडियंस ने एक दिन सीधा कह दिया, नहीं यार, अब तुम नहीं, हम डिसाइड करेंगे। और तब से कुछ बदला है। धमाल 4, कॉकटेल 2, वेलकम टू द जंगल जैसी फिल्में अपनी फेमिलियर दुनिया के साथ अब भी चल रही हैं, लेकिन साथ में यू गॉट फिल्म्स लाइक टॉक्सिक, आवारापन, हैवान, धुरंधर भी। ऐसी फिल्में, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिन्हें शायद 5-10 साल पहले कोई फिल्म मेकर पिच करने से पहले दो बार सोचता। और बात ये नहीं है कि लोगों ने कमर्शियल सिनेमा को रिजेक्ट कर दिया, बात सिर्फ इतनी है, अब ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझकर एक्सेप्ट करने का जमाना गया। आज फिल्म मेकर रिस्क लेता है तो जनता उस रिस्क को नोटिस करती है, कभी गले लगाती है, कभी सीधा रिजेक्ट कर देती है। और शायद इसलिए धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं लगती। जैसे दिल चाहता है ने एक वक्त पर हिंदी सिनेमा का एक नया पन्ना खोला था, शायद धुरंधर भी एक पेज टर्नर है। और आज का पहला पन्ना खुलता है नंबर 20 पर, जाइए सजना बाय जैस्मिन सैंडलर्स फ्रॉम धू रन धर।
6: नंबर 20

0: यार सीक्वल बनाना वैसे भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन धुरंधर गॉट इट राइट एंड समहाउ इवन धमाल 4 गॉट इट राइट। उसका गाना चटनी इज ऑन नंबर 19 दिस वीक, लेकिन चटनी के ठीक ऊपर है इस हफ्ते का गाना नंबर 18, विच इज हुमा कुरैशी की फिल्म बेबी डू डाई डू का गाना इश्क कमीना, ओरिजिनली पिक्चराइज्ड ऑन शाहरुख खान एंड ऐश्वर्या राय। सो आई डोंट नो कि इस गाने की पॉपुलैरिटी का क्रेडिट कितना इन दोनों को जाता है मोर देन दिस फिल्म बेबी डू डाई डू, लेकिन नंबर 17 पर जो आ रहा है उसमें एक अलग ही वॉर्म्थ है, शान, बस शान की आवाज।
1: जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं जो कभी मिली मुझे है नहीं, मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन वो लड़की है कहाँ।
0: कुछ आवाजें गाना नहीं गाती, सीधा स्क्रीन पर एक्टर को खड़ा कर देती हैं।
1: सोचती है ज्यादा कम वो समझती है, दिल कुछ कहता है कुछ और ही करती है। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती।
0: सैफ अली खान,
1: पर गुस्से में जब आए और आंखें वो दिखलाए, लड़ते लड़ते गलती से मुस्काए।
0: सैफ अली खान।

0: उड़ता हूँ।
1: फिर से सैफ अली खान। म्यूजिक हटा दीजिए, अरेंजमेंट को भी हटा दीजिए, सिर्फ शान की आवाज, फिर भी सामने वही सैफ अली खान। दिल चाहता है हम तुम सलाम नमस्ते तारा रम पम। शान और सैफ, एक ऐसी जोड़ी जो बॉलीवुड को थोड़ा हल्का, थोड़ा मासूम, थोड़ा खूबसूरत बना देती थी। और अब लगभग 20 साल बाद दोनों फिर साथ आए हैं। बस इस बार सैफ हीरो नहीं, पापा हैं, और शान की आवाज भी कुछ वैसी ही है। सिर्फ कहानी बड़ी हो गई है। नंबर 17 पर डेब्यू इन दिस वीक ऑन द मिर्ची टॉप 20, ये है मेरे हीरो है वो, हैवान से प्रीतम दा का म्यूजिक।
2: नंबर 17।
0: लेके जन्म पहला पहला कदम, जब चलते हैं हम उंगली थामे कोई।
3: लिख रहे हो ना?
0: तुम भी गाओ।

0: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
3: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
2: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

आरी आरी सालों से एग्जिस्ट करता था, लेकिन धुरंधर ने उसके अंदर एक नया मीनिंग भर दिया। अब जब भी ये बीट बजती है तो दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, रणवीर सिंह की, बदले की आग में पूरी तरह गोइंग बिजर्क। नंबर 13 पर इट्स आरी आरी फ्रॉम धुरंधर द रिवेंज। और शायद सिनेमा में गाने की असली पावर यही है यार, कभी फिल्म किसी गाने को अपना बना लेती है और कभी कोई गाना फिल्म से बाहर निकलकर अपनी दुनिया बना लेता है। अनिरुद्ध रविचंद्र का बनाया एक ट्रैक द राग ऑफ रिवेंज इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये फिल्म के लिए बना ही नहीं था, कैन फिल्म फेस्टिवल के लिए एक फिल्म डीसी नाम की भेजी जा रही थी और उसके लिए ये ट्रैक एक लास्ट मिनट एडिशन था, लेकिन फिर इंटरनेट ने इसे पकड़ लिया।

gym edits, anime fights, gangster montages, transformation videos, vocal challenges. 48 ghante mein ye gana ho gaya totally viral. और सबसे क्रेजी बात पता क्या है, इस गाने को किसी फिल्म की वैसे जरूरत ही नहीं पड़ी। कभी कभी एक थीम से फिल्म का साउंड ट्रैक नहीं होती, वो फिल्म का एटीट्यूड बन जाती है। लेकिन अब इसी एटीट्यूड से बिल्कुल एक अलग फ्लेवर की तरफ जाने वाला हूं मैं, बिकॉज नंबर 12 पर है द मेडिटेरेनियन फील ऑफ माशुका फ्रॉम कॉकटेल 2। नंबर 12।

तबाही नाम ही काफी है, लेकिन कितनी टॉक्सिसिटी फैलेगी सिनेमा स्क्रीन्स पर, वेल आई डोंट नो। लेकिन इसी मैडनेस के बीच एक गाना और है जो सुनने में वैसे लव सॉन्ग लगता है, जैसे एक लड़का अपनी महबूबा के लिए ये गाना गा रहा हो, लेकिन शायद ये गाना वैसा है नहीं। तेरा मेरा रिश्ता 2007 में इमरान हाशमी एक ऐसे इंसान की तरह गा रहे थे जो किसी इंसान से नहीं अपने खुदा से सवाल कर रहे थे, और अब 19 साल बाद आवारापन 2 में वही रिश्ता वापस आया है। बस एक चीज बदल गई है, पहले इंसान खुदा को बुला रहा था, इस बार खुदा इंसान से बात कर रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ये कोइंसिडेंस है, मिथुन के म्यूजिक में खुदा अक्सर एक किरदार की तरह आते हैं, कभी दूर, कभी खामोश, और कभी एक टूटे हुए इंसान के बिल्कुल सामने। मर्डर 2 का ए खुदा याद कीजिए।

0: वही डेस्पिरेशन, वही सवाल, वही यकीन और शक के बीच का वो एक पल। शायद इसलिए तेरा मेरा रिश्ता को 2007 में सुनना और आज 2026 में सुनना दो अलग अलग अनुभव हैं, टू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। कभी कभी एक गाना दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं होता, इंसान और उसके खुदा के बीच की बात होती है। और 19 साल बाद शायद उस बात का जवाब भी आ गया है। तेरा मेरा रिश्ता, आवारापन 2,
1: नंबर 6।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: सिर्फ बंगाल के नहीं हिंदुस्तान के हिट हीरो, नाम है इनका जीशु सेनगुप्ता। इनसे एक बार पूछा गया,
4: हूज मोस्ट लाइकली टू डाई टू प्रोटेक्ट यू, अपनी जान दे देंगे लेकिन आपको जरूर बचाएंगे।
5: आई हैव फ्यू पीपल, यस आई कैन से दे माय फ्रेंड्स, दे माय फैमिली, लाइक एट लीस्ट टू पीपल टू आई नो, आई एम नॉट नेमिंग देम बट
4: दे नो हु दे आर,
5: टू पीपल दे विल डाई फॉर मी, या आई एम ब्लेस्ड, ब्लेस्ड।
3: जीशु सेनगुप्ता, उस टू की लिस्ट में एक और नाम जोड़ दीजिए, थ्री कर दीजिए, बिकॉज आई विल ऑल्सो। ये यू आर लिस्निंग टू मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट, आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट,
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये,
6: उसे सब पता है।
9: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
6: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर, दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू एट द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट, गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम एक स्टेज और दो कमाल, बुक योर टिकट्स नाउ एट STT Snoo Noo, टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। The Mentalist Suhani Shah.

कभी कभी किसी आवाज की कीमत तब समझ आती है जब हमें पता चल जाता है कि शायद अब वो आवाज रोज नहीं सुनाई देगी। ये आवारापन इज ऑन नंबर टू, लास्ट वीक इट वॉज ऑन नंबर वन, लेकिन आवाज वही है अरिजीत की। और अजीब बात यह है, अरिजीत अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर चुका है, लेकिन जाते जाते भी ऐसे गाने दे रहा है जो हमें उसे जाने नहीं देना चाहता। और शायद इसलिए उसका गाया हुआ एक गाना थोड़ा ज्यादा महसूस होता है, खासकर उसकी कही हुई, सॉरी गाई हुई एक लाइन।

15 साल पहले जब अरिजीत ने ये लाइनें गाई थी तब ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत खूबसूरत स्टैंजा है, लेकिन आज सुनता हूं तो लगता है जैसे किसी ने हमें पहले ही अंदेशा दे दिया था कि एक दिन ये लम्हे गुजर जाएंगे। यार इस बीते हुए डेढ़ दशक में हमारे बीच कितनी आवाजें आई हैं, लेकिन मेरी जनरेशन की खुशियां, उनकी तन्हाइयां और उनके हार्ट ब्रेक्स, अरिजीत की आवाज ने इन सबका सिर्फ साथ नहीं दिया, इन्हें डिफाइन किया है। और अब जब एक दौर धीरे धीरे खत्म होने की दहलीज पर पहुंच रहा है, शायद सबसे खूबसूरत बात यह है कि अरिजीत की कमी महसूस होने से पहले ही उनकी याद हमारे पास आ चुकी है। और आज उस याद का एक और पन्ना मैं आपको सुना रहा हूं, बिकॉज दिस सॉन्ग हैज वंस अगेन क्लाइम टू नंबर वन। अरिजीत विद अनदर मेमोरी, दिस इज गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर। नंबर वन।

0: और एक बार फिर गहरा हुआ ने सबसे ऊपर चोटी पर अपनी जगह बना ली है। अरिजीत सिंह की आवाज, धुरंधर का जुनून और मिर्ची टॉप 20 का एक और एपिसोड। बस आज के लिए इतना ही, मिलूंगा आपसे अगली बार। तब तक सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
3: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
2: अरे कहीं शांति नहीं मिलती, घर जाऊं तो बीवी लड़ती रहती है, गार्डन जाऊं तो बच्चे चेंचे करते रहते हैं, मैं क्या करूं?
3: अरे तू एक काम करना, शमशान चला जा, उधर बहुत सारी शांति रहती है रे।
4: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

टीडीएलजे ले लो, मोहब्बतें ले लो, रब ने बना दी जोड़ी ले लो, ये तीनों और भी कई सारी हिट हिट फिल्में, धूम ले लो, वॉर टू ले लो, ऑल ऑफ देम, ये सब बनाने वाले थे आदि चोपड़ा यानी आदित्य चोपड़ा। लेकिन आदित्य चोपड़ा ने ये फिल्म मेकिंग जो थी ये सीखी कौन सी फिल्म से, कौन सी फिल्म के साथ उन्होंने सेट पे पहली बार कदम रखा था, आज उसी फिल्म को लेकर के आई हूँ। यश चोपड़ा साहब बना रहे थे चांदनी, ओ मेरी चांदनी। Well, इस फिल्म के डायरेक्शन के लिए उन्होंने अपने बेटे को असिस्टेंट डायरेक्टर यानी आदि चोपड़ा को असिस्टेंट डायरेक्टर रखा था, और बस इसी फिल्म की बारीकियों को सीख करके आदित्य चोपड़ा ने आगे आने वाली सारी फिल्में बनाई। चांदनी के ना बहुत सारे किस्से हैं, सब पता करके लाई हूँ, एक एक करके शेयर करूंगी। अभी जल्दी किस बात की है, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे सुनो होता है क्या। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सका बाना
3: क्या बाना
2: मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो
5: हेलो बेटा नवनीत।
4: आप कौन?
5: पापा कहाँ हैं?
4: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
5: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
4: लेकिन आपको काम क्या है?
5: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
4: पापा ने कहा था?
5: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को।
4: क्या हुआ अंकल?
5: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना, मेरे जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
4: अब मुझे क्यों डांट?
5: चुप कर।
4: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूं।
5: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूं मैं। चुप कर ऐसा तूने।
4: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं
5: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
4: लेकिन बुरी क्या
5: लगी? अंकल कल भी आंखो एक मारूंगा।
4: बदतमीजी क्या करी
5: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
4: कह रहा मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
5: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
4: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
5: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
4: क्या बोलूं?
6: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
4: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
5: चुप कर, मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
7: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
8: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
9: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
8: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नूनू। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

यश चोपड़ा साहब ने तो अपनी चांदनी रेखा जी में देखी थी, पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ। एंड आज जिस फिल्म की बातें हो रही हैं वो है रंग भरे बादल में तेरे नैनों के काजल में मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम चांदनी। सो यश चोपड़ा साहब ने जब ये फिल्म बनाई ना, वो चाहते थे कि चांदनी के रोल में उमराव जान, मेरा मतलब है कि रेखा जी आए। एंड ऑल्सो बिकॉज चांदनी नाम काफी फेमस हो चुका था लोगों के बीच में। पूछो क्यों? क्योंकि इस फिल्म से पहले यश चोपड़ा साहब ने बनाई थी सिलसिला, और सिलसिला में चांदनी बनी थी रेखा जी, यानी कि उनका नाम, उनके कैरेक्टर का नाम चांदनी था। लेकिन रेखा जी ने ना अनएक्सपेक्टेडली, यश साहब को कोई मना नहीं करता था, उन्होंने ये रोल करने से मना कर दिया। क्यों किया? इंटरेस्टिंग स्टोरी, अभी बताऊंगी आपको। गाने सुनकर के वापस आओ। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

क्योंकि रेखा नहीं चाहती थी कि चांदनी की कोई भी याद उनके पास अब रह जाए। पुरानी जींस पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट श्रीदेवी वाली चांदनी। अब हुआ ये कि यश चोपड़ा साहब चाहते थे कि रेखा जी उनकी फिल्म की चांदनी बने, और ऐसा इसलिए भी बिकॉज सिलसिला जब उन्होंने बनाई थी ना, जो कि चांदनी से पहले थी, उसमें रेखा जी ने चांदनी का कैरेक्टर प्ले किया था। एंड जब यश साहब उनके पास ये रोल का ऑफर लेकर के गए, He never expected कि रेखा जी इस इतने मीठी रोल से, इतने खूबसूरत रोल से मना कर देंगे, क्योंकि इस रोल में बहुत सारे शेड्स थे। रेखा जी ने पता है क्यों मना किया? She said कि मुझे ना, जब मैंने सिलसिला करी तो बहुत ही मेरी फीलिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि टॉर्चर हुआ, और वो काफ़ी ड्रेनिंग था मुझे सिलसिला को फिर से रिपीट नहीं करना। एंड दैट्स व्हाई शी डिनाइड कि सिलसिला से रिलेटेड अगर एक कैरेक्टर का नाम भी चांदनी रिपीट हो रहा है तो वो उस यादों में नहीं जाना चाहती थी। ऑलराइट, फिर श्रीदेवी कैसे आई बताऊंगी आपको। वापस आओ श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जींस।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: Karizma Kapoor.
4: Who's most likely to sleep with the lights on because they're so scared to that?
5: I have to answer this?
4: No, I'm asking just like that. Karishma, ma'am, ek ka to jawab de do.
5: Probably Kareena.
4: Honey.
5: Out of both of us.
3: Bebo ko dekh ke lagta nahi hai wo darti hongi. Because she's always in safe hands. If you know what I mean. Aap sun rahe hain Mirchi, it's hot.
1: Bollywood Bol Dal. Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
2: Only on Mirchi, it's hot.
6: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
8: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है।
9: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

शिट, सारी उस टाइम की बड़ी एक्ट्रेसेस ने ये रोल करने से मना कर दिया। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, चांदनी फिल्म की बात हो रही है। कौन सा रोल मना कर दिया? देविका का रोल। देविका विनोद खन्ना की वाइफ दिखाई जाती हैं, जो कुछ देर के लिए आती हैं, एक आध गाने में आती हैं, एंड दैट्स इट। वेल ऑफकोर्स उस टाइम की सारी एक्ट्रेसेस को लगा कि इतना बड़ा रोल, इतना मीठी रोल जो है चांदनी का, वो तो श्रीदेवी को जा रहा है। अब श्रीदेवी के सामने हम में से कौन टिकेगा, इसलिए मोस्ट ऑफ देम डिनाइड डूइंग द रोल। फिर आई जूही चावला। जूही चावला एकदम फ्रेश फेस थी उस समय, एंड शी वॉज ट्राइंग टू गेट इन टू यू नो बिग फिल्म, शी वॉज ट्राइंग टू वर्क विद बिग डायरेक्टर्स। तो जैसे ही यश साहब ने ये न्यू कमर जूही चावला को रिक्वेस्ट किया, वो फौरन मान गई, एंड दिस वर्कड आउट इन हर फेवर। क्योंकि इसके बाद एक अच्छा सा मेकओवर दे करके यश साहब ने लॉन्च की अपनी जूही चावला को इन द फिल्म डॉर। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
1: मैं रोज सुबह योगा क्लास में जाता हूँ और योगा करते करते गैस निकल जाती है, मैं क्या करूँ?
2: गैस निकल जाती है हु? तो घर से निकले तो पहले ही नॉब चेक करके जाया कर।

ज्योमेट्रिक प्रिंस इन्होंने सिलसिला में भी पहने पुरानी जीन्स पे। हाय मैं हूँ श्रेया और आज ना उस जमाने की हीरोइंस के लाए हुए फैशन स्टेटमेंट्स जो हम आज तक इस जमाने में फॉलो करते हैं ना वो ढूंढ करके लाई हूँ मैं। सो रेखा जी ना ज्योमेट्रिक प्रिंट्स पहनती थी और जंप सूट्स जो आजकल हमें बहुत पसंद है एक्चुअली में सबसे पहले रेखा जी ने पहने थे। खूबसूरत फिल्म ले लो, सिलसिला ले लो एंड सो मैनी ऑफ देम भाई। शी वॉज नोन फॉर हर बोल्ड लुक्स और फिर उनकी रेड चटक लिपस्टिक। ओहो हो वैसे रेखा जी की बिंदी भी ना बहुत पॉपुलर हुई थी, वो ब्लैक वाली भी और रेड वाली भी जो उन्होंने सिलसिला में लगाई है। आज ना ऐसी वो सारी हीरोइंस के फैशन स्टेटमेंट्स जो कि पूरे इंडिया में रेज बन गए थे, हर लड़की फॉलो कर रही थी, हर लड़की जो कॉलेज गोअर थी, हर लड़की जो हॉस्टल में रहती थी, हर लड़की वेल आज पुरानी जीन्स पे अगला किसका बताऊंगी। हाउ अबाउट जीना तमान? तो वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: गुड इवनिंग मिस्टर श्रीवास्तव, मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से। हाउ आर यू?
3: थैंक यू।
4: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है।
3: आई नो, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा। हाँ,
4: नहीं वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे। यू नो,
3: मतलब क्या परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
4: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो। आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे।
3: लगे हुए गेम है क्या ये?
4: आओ मिलो शिलो शालो,
3: मतलब पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
4: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है। आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए। राइट, देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह। आओ मिलो,
3: आओ मिलो,
4: चलो चलो
3: चलो,
4: कच्चा धागा,
3: कच्चा धागा,
4: रेस लगा लो,
3: रेस लगा लो,
4: दस पत्ते तोड़े,
3: दस पत्ते तोड़े,
4: एक पत्ता कच्चा,
3: एक पत्ता कच्चा।
4: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज़ बोलेंगे, दस पत्ते तोड़े
3: तोड़े,
4: या मिस्टर श्रीवास्तव दस पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
3: दस दस दस पत्ते तोड़े,
4: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा,
3: ओके ओके सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा,
4: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
3: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
4: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को,
3: श्रीवास्तव
4: बोले कुकड़ू को। बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
3: यार ये कुछ
4: सर, ये सर ये सब सुन चुके हैं, अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट, फोर बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
7: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

गोविंदा ने इस रोल से मना किया और उसके बाद अनिल कपूर ने इस रोल से मना किया, और दोनों का रीजन पता क्या था? उनको व्हील चेयर पे नहीं बैठना था। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड यश चोपड़ा साहब को अपने रोहित को तो व्हील चेयर पे बैठाना ही था। वेल फाइनली उस रोल को हाँ करी थी ऋषि कपूर ने। पुरानी जीन्स पे वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म चांदनी, इसी फिल्म के गाने भी हो रहे हैं। तो यश चोपड़ा साहब ने सबसे पहले अनिल कपूर को ये रोल ऑफर किया था ऑपोजिट श्रीदेवी, ही सेड नो। उसके बाद उन्होंने ऑफर किया था ये रोल गोविंदा जी को, ही ऑल्सो सेड नो। मतलब दोनों लोगों को लगता था कि भाई डांस वाला ईरा है जिसमें एक्शन चल रहा है हीरो का, ये वो ईरा है जहां फिल्में बन रही हैं जिसमें डांस हो रहा है हीरो का, ऐसे में मेन लीड अगर व्हीलचेयर पे बैठ जाएगा तो क्या होगा। लेकिन यश साहब को पता था कि उनको अपने हीरो को सिंपथी दिलवानी है ऑडियंस से और उसके रैश बिहेवियर को जस्टिफाई करना है। फाइनली इस रोल को ऋषि कपूर ने ऑफ कोर्स हामी भरी एंड देन वी ऑल नो इट वाज अ सुपर डुपर हिट फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची बैक टू स्कूल पार्टी वाज रियल फन। हियर आर द हैप्पी किड्स।
2: हेलो, मी एंड माय ब्रदर एंजॉयड अ लॉट। इट वाज अ वेरी गुड इवेंट। थैंक यू मिर्ची वन। बाय।
3: हाय, आई एम याहिया। एंजॉय लॉट। Thank you, Mirchi One.
4: Hi, Mirchi One FM. This is Yazdan. Thank you so much for organizing such a wonderful event. It was so much fun and I really enjoyed every moment. I love the gifts, especially the Jungle Zone voucher. Thank you so much for organizing such a wonderful event.
1: Mirchi.

चांदनी जैसी रोमांटिक फिल्म ना उस दौर में आई थी जब उस समय सिर्फ और सिर्फ एक्शन फिल्मों का बोलबाला था। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ और एक्शन फिल्में ही लोग देखने जाते थे बॉक्स ऑफिस पे। नाउ चांदनी कहते हैं कि वो उस रोमांटिक जॉनरा को ना फिर से वापस लेकर के आया। लेकिन आपको पता है यश चोपड़ा साहब को ये आइडिया आया कहाँ से? मैं बताती हूँ। कहते हैं कि यश चोपड़ा साहब पुणे से लेकर के बॉम्बे तक एक गाड़ी में बैठ के जा रहे थे किसी काम से, एंड ही सडनली नोटिस कि जितने भी बैनर्स, जितने भी पोस्टर्स लगे हैं बड़े बड़े फिल्मों के, वो सब एक्शन फिल्में हैं। एंड ही रियलाइज कि वेयर इज द रोमांस। दैट वाज द टाइम जब उनको लगा कि ओहो, ये वो टाइम है जब मुझे वापस इंडिया को, बॉलीवुड को ना रोमांस देना चाहिए। और उन्होंने चांदनी बना दी। एंड वॉट अ सुपर डुपर हिट फिल्म। वेल, आज इसी फिल्म की बातें, इस फिल्म के गाने श्रेया के साथ। तो बस मिर्ची सुन रहे हो और सुनते रहो

0: बताइए बताइए
1: ना ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।

0: आजादी हो।
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो
1: नाना,
0: सुनो तो सुनो तो।
2: आप यहाँ आए किस लिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: muskrai. Pelle zara muskrai.
1: Pelle zara muskrai.
2: विनोद खन्ना की इस आदत से बहुत परेशान हो गए थे यश चोपड़ा। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सुपर हिट फिल्म चांदनी। अब क्या हुआ कि विनोद खन्ना हमेशा सेट पे बहुत लेट आते थे। यश चोपड़ा यूज्ड टू बी ऑलवेज पंक्चुअल, ऑलवेज ऑन टाइम एंड रेस्ट ऑफ द क्रू एज वेल। श्रीदेवी तो उस समय नई नई स्टार थी। सो विनोद खन्ना के लेट आने के चक्कर में यश चोपड़ा साहब को इतना खराब लगा, इतना गुस्सा आया दैट इट इवेंचुअली लेड टू चेंजिंग द स्क्रिप्ट। अगर आप चांदनी देखो तो होता क्या है कि पहले स्क्रिप्ट में सोचा गया था स्टोरी लाइन में कि फर्स्ट हाफ विल बी डेडिकेटेड टू ऋषि कपूर एंड आफ्टर ही मीट्स द एक्सीडेंट उसके बाद इंटरमिशन के बाद विनोद खन्ना पे फिल्म जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो इसलिए क्योंकि विनोद खन्ना के सीन्स लेने में ही ना आधे से ज्यादा दिन निकल जाता था और आधा दिन उनका वेट करने में। तो यश चोपड़ा साहब ने ना एकदम स्क्रिप्ट ही बदल दी। उन्होंने विनोद खन्ना को एक्चुअली में बस एक गेस्ट अपीयरेंस की तरह थोड़े बहुत सीन्स दिए। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ चांदनी के गाने आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में, सो डोंट यू गो एनीवेयर।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: अरे सर मेरा बच्चा सवाल पूछ पूछ के दिमाग खा जाता है, जवाब दे दे के थक गया हूँ मैं, क्या करूँ।
1: अरे तुम तो मुझसे क्यों पूछ रहा है, मैं थोड़ी ना तेरा बाप हूँ।
2: रात के बज चुके हैं 10, मिर्ची पे शो का नाम पुरानी जीन्स।

पुरानी जींस पे आपको श्रेया के साथ, और आज चांदनी फिल्म की बातें हो रही हैं, इस फिल्म के गाने हो रहे हैं, और जो अगला गाना है वो मुझे लगता है कि हर ब्राइड अपने संगीत में कभी ना कभी जरूर गाती है और इस पे परफॉर्म करती है। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, इसमें पहला संदेशा पता नहीं किसका आया, दूसरा संदेशा, तीसरा संदेशा, इट इज सच अ वेडिंग सॉन्ग। एंड यू नो ये गाना किसने गाया है? You will be shocked to know, you will be surprised to know. Well, ये गाना पैमेला चोपड़ा जी ने गाया है, यानी यश चोपड़ा की वाइफ। तो ये गाना आज हो जाए।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना
1: बाना
2: मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो
3: भैया, आवाज साफ नहीं आ रही। कम आ रही आवाज?
4: भाई साहब, आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
3: हाँ जी।
4: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
3: अच्छा अच्छा।
4: तो ये यार, ये ड्रिल मशीन कैसे दिए? ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
3: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
4: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर। रमेश इसे बंद कर दे यार। आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले।
3: मैं
4: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
3: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
4: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे भसवाएगा तू?
3: तो ड्रिल मशीन हमारे लेके तो चोरी करने गया।
4: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
3: चोरी करने ले गया
4: तुमने पहले के लिए बताया
3: यहाँ पे ड्रिल मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा है, मुझे फसवाएगा।
4: मेरी बात सुन,
3: माँ का तू मुझे मरवाएगा। कल तुझे मुझे फोन कर दिया।
4: मेरी बात सुन।
3: हेलो
4: यार, कमाल है, आप तो मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
5: सर सर सर सर, मेरी बात सुनिए। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
3: कहाँ से बोल रहे भैया?
5: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
4: अब ठीक है।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
7: 89.6
6: इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

जितनी भी स्टोर्स थे, जितनी भी शॉप्स थी, उन पे ना ये कॉस्ट्यूम कम पड़ गई थी। हजारों लड़कियां बस यही खरीद के जा रही थी पुरानी जीन्स पे। आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म चांदनी। सो भाई, इस फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइनर पहले थी भानु अथैया जी, यस द रिनाउंड भानु अथैया जी। व्हाट हैपेंड वाज कि उनके कुछ क्लैश हुआ यश चोपड़ा जी के साथ एंड शी लेफ्ट द फिल्म। उसके बाद इन केम लीना दारू, एंड लीना दारू ने भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस को यू नो ड्रेस किया था, बट फॉर हर चांदनी जैसा यश जी ने डिस्क्राइब किया था ना, उनके लिए उन्होंने बस एक व्हाइट कुर्ता, व्हाइट चूड़ीदार एंड लहरिए वाला दुपट्टा चूज किया एंड इट बिकेम आइकॉनिक। मेरी मॉम भी बताती हैं कि मतलब हर कोई वही कॉस्ट्यूम, हर लड़की वही कॉस्ट्यूम पहनना चाहती थी और पहनी भी। आप सोचो, हजारों स्टॉक आता था चांदनी चौक में, ये आज तक की भी स्टोरी है, और व्हाइट चूड़ीदार और व्हाइट कुर्ता खत्म कुछ ही दिनों में। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म का गाना, विच इज संग में सुरेश वाडकर। कमिंग अप राइट नेक्स्ट, मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoono. Tickets available in all leading ticketing platforms.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
2: सावन का महीना पवन करे सोर।

गोविंदा ने इस रोल से मना किया और उसके बाद अनिल कपूर ने इस रोल से मना किया, और दोनों का रीजन पता है क्या था? उनको व्हील चेयर पे नहीं बैठना था। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड यश चोपड़ा साहब को अपने रोहित को तो व्हील चेयर पे बैठाना ही था। वेल फाइनली उस रोल को हाँ करी थी ऋषि कपूर ने। पुरानी जीन्स पे वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म चांदनी, इसी फिल्म के गाने भी हो रहे हैं। तो यश चोपड़ा साहब ने सबसे पहले अनिल कपूर को ये रोल ऑफर किया था ऑपोजिट श्रीदेवी, ही सेड नो। उसके बाद उन्होंने ऑफर किया था ये रोल गोविंदा जी को, ही ऑल्सो सेड नो। मतलब दोनों लोगों को लगता था कि भाई डांस वाला हीरा है जिसमें एक्शन चल रहा है हीरो का, ये वो हीरा है जहां फिल्में बन रही हैं जिसमें डांस हो रहा है हीरो का, ऐसे में मेन लीड अगर व्हीलचेयर पे बैठ जाएगा तो क्या होगा। लेकिन यश साहब को पता था कि उनको अपने हीरो को सिंपथी दिलवानी है ऑडियंस से और उसके रैश बिहेवियर को जस्टिफाई करना है। फाइनली इस रोल को ऋषि कपूर ने ऑफकोर्स हामी भरी एंड देन वी ऑल नो इट वॉज अ सुपर डुपर हिट फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ कम राइट बैक।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: राखी सावंत, हाल ही में वर्ल्ड योगा डे गया है जहां हमने तरह तरह के लोगों को योगा करते हुए देखा है, आप उनके बारे में क्या सोचती हैं?
4: बहुत सारे लोग योगा जो है ना वो एसी में बैठ के करते हैं, कुछ लोग ओपन करते हैं। हमारा योगा हॉट योगा है, प्लीज आप राखी सावंत के साथ कॉम्पिटिशन कीजिए योगा में, मैं आपको पक्का हरा दूंगी।
3: ऐसी कोई चीज है ही नहीं राखी सावंत जिसमें हम आपसे जीत सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, शी इज हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
6: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है।
8: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms.
9: मिर्ची स्टोरीज,
10: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
11: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
12: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
0: मिर्ची, इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: नहीं।
1: पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, और ये तो वही टाइम होता है जब आराम से गाड़ी में बैठते हैं मैं और आप, गाड़ी के शीशे नीचे करते हैं और ठंडी हवा के झोंके में लेट्स हिट द हाईवे। आज का मेरा हाईवे हिट मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ उन लोगों को जो दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, जो जानते हैं कि उनका जो दिल पर है यानी जिससे वो प्यार करते हैं या फिर जो उनसे प्यार करता है, वो उनकी एक हाँ सुनना चाहता है लेकिन वो बस उन्हें टीज करके चले जाते हैं, कभी मुस्कुरा के कभी नाराज़ होके, लेकिन दिल की बात जुबान पे नहीं लाते। ये गाना आज उन्हीं लोगों के लिए। ऑन दैट नोट दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ, गुड नाइट। अगर आपको मुझसे वन टू वन ऐसे बात करनी है ना, या तो सिर्फ मैं बात करती हूँ, तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे एसएचआरई श्रेया विद लव मेरा हैंडल है। गुड नाइट।

0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या, क्या, क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है?
1: नहीं तो।
0: रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा, कैसा, कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: ए, क्या लगा रखा है ये सब? क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।